0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Murga, murga. Navidwala, murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब इसकी फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
3: अरे यार
2: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोने थे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
2: तुमने आम संगत तुमने बनाया ठीक है ना भैया, पैसे भाड़ मंगाए।
3: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
6: नो
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: Tera kya hoga, Kalya?
13: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
12: Ab mirchi kha.
14: Radio Mirchi. It's hot.
15: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go.

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विथ यू, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर, क्लब मिर्ची।

चल रही है या कार की विंडशील्ड पे बारिश नाच रही है तो साउंड ट्रैक भी प्रीमियम होना चाहिए। वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, लेट्स कीप द वीकेंड अलाइव विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंदिका बेबी।

छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दीजिए। वेट रोड्स पे ब्रेक्स को टाइम लगता है लेकिन एक्सीडेंट्स को नहीं। सीट बेल्ट ऑन रखिए, फोन साइड में रखिए और सेफली घर पहुंचिए। पार्टी बाद में भी होती रहेगी। डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयो आते हैं ना क्लब मिर्ची लेके हर हफ्ते।

म्यूजिक का वॉल्यूम हाई हो सकता है लेकिन स्माइल उससे भी हाई होनी चाहिए। वीकेंड है बॉस, डांस करो, गाओ, बारिश एंजॉय करो और क्लब मिर्ची के साथ गुड वाइब्स स्प्रेड करते

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go!

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योन दिखा विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो विद यू टुनाइट, लेट्स गो।

वीकेंड के प्लान सक्सेसफुल हो या कैंसिल, प्लेलिस्ट कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। सो वेदर यू आर एट अ हाउस पार्टी, कैफे या अपने रूम में सोलो कॉन्सर्ट कर रहे हो, क्लब मिर्ची इज राइट देयर विद यू। लेट्स गो।

की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयरएवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका विद यू, लेट्स गो।

बारिश का अपना स्वैग होता है भाई, कभी रोमांटिक कभी फुल फिल्मी, और हम लेकर आए हैं इसी वाइब के ब्लॉकबस्टर ट्रैक्स। कीप स्माइलिंग कीप ग्रूविंग विद डीजे विचरण मिर्ची और योंतिका क्लब में।

का सीजन है, हर मैच एक इमोशन और हर गोल एक सेलिब्रेशन। टीम कोई भी हो, म्यूजिक सबका कॉमन लैंग्वेज है। लेट्स कीप द एनर्जी रोलिंग विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका।

कभी डांस फ्लोर पे स्टेप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एटीट्यूड होना चाहिए 100%. सो फॉरगेट द मूव्स, बस फील द म्यूजिक. दैट्स द क्लब मिर्ची वे विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम दिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: कहाँ करा तो नहीं हो गया
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और की सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा सीवर साफ होने का काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकड़ू
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट ये पटा
6: तेरा क्या होगा कालिया
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
6: अब मिर्ची खा
5: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
8: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

का फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

वीकेंड का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका विद यू एंड दिस इज द

यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी काला नात।

रेन प्लस फ्रेंड्स प्लस म्यूजिक इक्वल्स टू वीकेंड गोल्स. और अगर फ्रेंड्स बिजी है तो स्पीकर को बेस्ट फ्रेंड बना लो, साथ डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो का तो है ही कंपनी देने के लिए. लेट्स गो अगेन.

बाद भी मिलते रहना यार फन रील्स बिहाइंड द माइक मोमेंट्स और एवरीडे मैडनेस के लिए फॉलो मी अयंतिका ऑन सोशल मीडिया AYANTIKA. वीकेंड वाइब्स कंटिन्यू ऑन योर फीड टू. लेट्स गो. दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची अयंतिका.

अपनी खिड़की खोलो और बारिश की हवा को फील करो, फिर वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो। कुछ मोमेंट्स को सिर्फ एंजॉय किया जाता है, एक्सप्लेन नहीं। DJ Richard Mirchi, Oyo Antika with you on Club Mirchi.

करे चिल, एक बात फिक्स है, अच्छा म्यूजिक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, और जब क्लब मिर्ची हो साथ तो मूड ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो ही जाता है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो ऑन द काउंट विद यू टुनाइट।

वाटर लॉगिंग दिखे तो अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, स्लो ड्राइव करिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और फ्लडेड रोड्स को अवॉइड कीजिए। बारिश का मजा तभी है जब आप सेफली घर पहुंच जाए। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची टुनाइट।

वीकेंड खत्म हो जाएगा लेकिन आज की मेमोरीज और ये गाने प्लेलिस्ट में हमेशा रहेंगे. सो लाफ अ लिटिल लाउडर, डांस अ लिटिल लॉन्गर और हर बीट को दिल से फील करो. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विथ यू टुनाइट.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है? मतलब बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
3: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
2: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें देख लो, ये तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: भाई। आप ही रखो यार, आप रख लो, ये
2: यार।
3: अरे पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
3: अरे अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान का तुमने बनाया ठीक है ना।
2: हाँ?
3: भैया पैसे भाड़ में गए।
2: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसे टेंशन लग रहे हैं। मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
2: संदीप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योम टिका विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग द बेस्ट लाइफ, और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची और योंटिका।

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त. Let's go baby.

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब मिर्ची दिस विद मी मिर्ची और योंतिका।

इसी के साथ आज की क्लब मिर्ची पार्टी यही रैप करते हैं। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। बारिश को एंजॉय करिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट सेलिब्रेट करिए अपनों के साथ, वक्त बिताइए और सबसे जरूरी सेफ रहिए। अगले वीकेंड फिर से मिलेंगे और लेकर आएंगे और भी ज्यादा म्यूजिक, मस्ती और मैडनेस। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप डांसिंग एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची। टाटा, इट्स हॉट।

करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ओयोंदिक एंड विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों तक पार्टी नॉनस्टॉप, हिट्स बैक टू बैक और वर्ल्ड कप फीवर के साथ बारिश वाली मस्ती भी। वेलकम टू क्लब।

हेलो पीपल, वी कैन फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्च ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल।

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा है ऐसा तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या लगी?
3: अंकल कल एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी
3: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ू?
2: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलू?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
6: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

मानसून की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयर एवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका विथ यू, लेट्स गो।

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है, टेंशन किस बात की? क्लब मिर्ची है ना? DJ Richard मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त. Let's go baby.

लाइफ को कभी कभी शफल पे छोड़ देना चाहिए। पता नहीं अगला सरप्राइज एक फेवरेट गाना हो या एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एंजॉय एवरी बीट विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

कप का फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब में चेयर्स विद मी मिर्ची और योंतिका।

रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयरएवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब रिची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका विद यू, लेट्स गो।

बारिश का अपना स्वैग होता है भाई, कभी रोमांटिक कभी फुल फिल्मी, और हम लेकर आए हैं इसी वाइब के ब्लॉकबस्टर ट्रैक्स। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रूविंग विद डीजे मिर्ची और योंतिका क्लब मिर्ची।

का सीजन है, हर मैच एक इमोशन और हर गोल एक सेलिब्रेशन। टीम कोई भी हो, म्यूजिक सबका कॉमन लैंग्वेज है। लेट्स कीप द एनर्जी रोलिंग विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड मिर्ची और योग दिखा।

कभी डांस फ्लोर पे स्टेप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एटीट्यूड होना चाहिए 100%. सो फॉरगेट द मूव्स, जस्ट फील द म्यूजिक. दैट्स द क्लब मिर्ची वे विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम टिका.

मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

बारिश की स्मेल, फ्रेश प्लेलिस्ट और वीकेंड का थ्रिल, बस इसी कॉम्बो के लिए तो पूरा हफ्ता वेट करते हैं। अब डांस करना कंपलसरी है विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे विथ यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: हेलो
3: हाँ
2: बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: तू कहाँ से रहा है तो नहीं हो गया है
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकुड़ुकु
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया
2: कुकुड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट इट्स हॉट
6: तेरा क्या होगा कालिया
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
6: अब मिर्ची खा
5: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
8: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग द बेस्ट लाइफ, और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका विद यू एंड दिस इज

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go!

में फेरी लाइट्स चल रही है या कार की विंडशील्ड पे बारिश नाच रही है तो साउंड ट्रैक भी प्रीमियम होना चाहिए। वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, लेट्स कीप द वीकेंड अलाइव विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो अंतिका बेबी।

छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दीजिए। वेट रोड्स पे ब्रेक्स को टाइम लगता है लेकिन एक्सीडेंट्स को नहीं। सीट बेल्ट ऑन रखिए, फोन साइड में रखिए और सेफली घर पहुंचिए। पार्टी बाद में भी होती रहेगी। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम तक आते हैं ना क्लब मिर्ची लेके हर हफ्ते।

म्यूजिक का वॉल्यूम हाई हो सकता है लेकिन स्माइल उससे भी हाई होनी चाहिए। वीकेंड है बॉस, डांस करो, गाओ, बारिश एंजॉय करो और क्लब मिर्ची के साथ गुड वाइब्स स्प्रेड करते

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्डन मिर्ची और ओम दिखा विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

वीकेंड के प्लान सक्सेसफुल हो या कैंसिल, प्लेलिस्ट कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। सो वेदर यू आर एट अ हाउस पार्टी, कैफे या अपने रूम में सोलो कॉन्सर्ट कर रहे हो, क्लब मिर्ची इज राइट देयर विद यू। लेट्स गो।

की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयरएवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड, मिर्ची ऑयल, दे गो विद यू, लेट्स गो।

बारिश का अपना स्वैग होता है भाई, कभी रोमांटिक कभी फुल फिल्मी, और हम लेकर आए हैं इसी वाइब के ब्लॉकबस्टर ट्रैक्स। कीप स्माइलिंग कीप ग्रूविंग विद डीजे विचरण मिर्ची और योंतिकांत क्लब मिर्ची।

कप का सीजन है, हर मैच एक इमोशन और हर गोल एक सेलिब्रेशन। टीम कोई भी हो, म्यूजिक सबका कॉमन लैंग्वेज है। लेट्स कीप द एनर्जी रोलिंग विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
3: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
2: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती हैं बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: हम। भाई आप ही रखो यार, आप हमें तो रख लो, ये बीच में रख लो हमें तो यार।
2: अरे यार
3: लूट रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
3: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान का तुमने बनाया ठीक है ना।
2: हाँ?
3: भैया पैसे भाड़ में गए।
2: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं। मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
2: संदीप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट,
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

वीकेंड का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

0: बोला।
1: बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका विद यू, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर, क्लब मिर्ची।

बोयार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात।

रेन प्लस फ्रेंड्स प्लस म्यूजिक इक्वल्स टू वीकेंड गोल्स। और अगर फ्रेंड्स बिजी है तो स्पीकर को बेस्ट फ्रेंड बना लो, साथ डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो का तो है ही कंपनी देने के लिए। लेट्स गो अगेन।

बाद भी मिलते रहना यार फन रील्स बिहाइंड द माइक मोमेंट्स और एवरीडे मैडनेस के लिए फॉलो मी ऑन योंतिका ऑन सोशल मीडिया AYANTIKA. वीकेंड वाइब्स कंटिन्यू ऑन योर फीड टू. लेट्स गो. दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका.

अभी खिड़की खोलो और बारिश की हवा को फील करो, फिर वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो। कुछ मोमेंट्स को सिर्फ एंजॉय किया जाता है, एक्सप्लेन नहीं। DJ Richard Mirchi, Oyo Antika with you on Club Mirchi.

नाइट हो या संडे चिल, एक बात फिक्स है, अच्छा म्यूजिक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, और जब क्लब मिर्ची हो साथ तो मूड ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो ही जाता है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिकट विद यू टुनाइट।

में वाटर लॉगिंग दिखे तो अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, स्लो ड्राइव करिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और फ्लडेड रोड्स को अवॉइड कीजिए। बारिश का मजा तभी है जब आप सेफली घर पहुंच जाए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची टुनाइट।

वीकेंड खत्म हो जाएगा लेकिन आज की मेमोरीज और ये गाने प्लेलिस्ट में हमेशा रहेंगे. सो लाफ अ लिटिल लाउडर, डांस अ लिटिल लॉन्गर और हर बीट को दिल से फील करो. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विथ यू टुनाइट.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. Navid bala, burga.
2: हेलो हेलो बेटा नवनीत,
3: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
3: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन बुरी क्या
2: लगी? अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग द बेस्ट लाइफ, और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त. लेट्स गो बेबी.

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब मिर्ची दिस विद मी मिर्ची और योंतिका।

और इसी के साथ आज की क्लब मिर्ची पार्टी यही रैप करते हैं। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। बारिश को एंजॉय करिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट सेलिब्रेट करिए अपनों के साथ, वक्त बिताइए और सबसे जरूरी सेफ रहिए। अगले वीकेंड फिर से मिलेंगे और लेकर आएंगे और भी ज्यादा म्यूजिक, मस्ती और मैडनेस। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप डांसिंग एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची। टाटा, इट्स हॉट।

फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब मिर्ची इट इज विद मी मिर्ची और योंतिका।

0: होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: जब हर बीट में हो तड़का, तब बनती है चटनी।

0: आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या बच्चों की किताबें और मूवीज भी हमारी सोच और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं? आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आप जो कह रही हैं वो सीएस लुईस जो है वो भी कहते हैं। सीएस लुईस वो इंसान है जिन्होंने नार्निया की पूरी दुनिया बनाई, उन्होंने लिखा नार्निया को, फेरी टेल है, परियों की दुनिया है एक तरह से। और वो कहते थे, खुलेआम कहते थे कि जब मैं 8 साल का था तो मैं छुप छुप के कॉमिक्स पढ़ता था, लेकिन जब मैं 50 साल का बना तो मैं खुलेआम कॉमिक्स पढ़ता था और वो दुनिया ही बना दी मैंने।
4: कॉमिक्स के अंदर बहुत डेप्थ होती है,
3: बिल्कुल होती
4: है, ऐसी बात नहीं है। आपको लगेगा वो कॉमिक है, लेकिन समटाइम्स एनिमेशन ग्राफिक कॉमिक्स इनके अंदर जितनी, इनफैक्ट इवन टॉम एंड जेरी आदि के अंदर भी,
3: और आज भी देखने में कितना मजा आता है।
4: मजा भी है पर बहुत टीचिंग्स भी है,
3: बहुत सारे
4: अंडरस्टैंडिंग भी है। यू कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम एनीवेयर। सी, अगर एक बुक, म्यूजिक आपको कंफर्टेबल फील करा रहा है, आपको और किसी चीज की कंपनी की जरूरत भी नहीं है, यू वेरी इमोशनली स्ट्रांग।
3: लेकिन जब उसका इम्पैक्ट कहीं और मेरे एनवायरमेंट में हो रहा है, चाहे मेरे प्रोफेशन में हो रहा है या पर्सनल लाइफ में हो रहा है, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूं?
4: प्रोफेशनल में वो तो आपने कहा कि अप्रेजल तो अच्छा है।
3: नहीं, अप्रेजल उनको फिर बोला गया कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं तुमको ट्रस्ट नहीं कर सकता, तुम इतनी इमेच्योर हो, तो भाई
4: इस बेसिस पे तो कोई नहीं निकालेगा ना, परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही निकालेगा ना। अगर आप परफॉर्म वेल कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू परफॉर्मिंग वेल, आपके जो हॉबीज हैं वो आपको डिफाइन करते हैं।
3: निकाला नहीं गया, लेकिन उसका जो अप्रेजल वो अच्छा इस वजह से नहीं हुआ। कह रहे हैं कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, उनको एक वजह चाहिए थी शायद उनको अच्छा अप्रेजल नहीं देने की।
4: आई पर्सनली फील कि और ही ये कम होता जा रहा है। कुछ छोटी छोटी ऐसी हॉबीज होना जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं या अच्छा फील कराते हैं या हैप्पी फील कराते हैं, वो जरूरी है। एज लॉन्ग एज वो कंटेंट एम्पावर कर रहा है, उस कंटेंट के अंदर कुछ भी वायलेंस नहीं है, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, वो कंटेंट की क्वालिटी आप चेक कर लें, फिर चाहे वो कॉमिक है, चाहे वो कोई वीडियो गेम है, चाहे वो कोई टीवी शो है, चाहे वो कोई इंस्टाग्राम की रील है, एज लॉन्ग एज अगर वो कंटेंट आपको एम्पावर कर रहा है, आपको अच्छा फील करा रहा है, आपको बेटर पर्सन बना रहा है, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू।
3: तो सीएस लुईस जिन्होंने नार्निया की दुनिया बनाई, वो कहते हैं कि द ऑब्सेशन विद सीमिंग ग्रोन अप इटसेल्फ इज अरेस्टेड डेवलपमेंट। बेसिकली बड़ा होना ही नहीं चाहिए, बच्चे बन के रहो, बहुत खुश रहोगे।
4: बच्चा क्या होता है, बच्चा प्रेजेंट मोमेंट में होता है, छोटी छोटी चीजें एंजॉय करता है
3: और भूल भी जाता जल्दी। अगर कुछ बुरा भी होता है तो बहुत जल्दी भूल जाता है, किसी और दुनिया में लग जाता है।
4: बेस्ट पार्ट है कि बच्चे की जो मेमोरी है ना, देखो एक चीज जो हमें नुकसान करती है, गुड मेमोरी को भी पकड़ के रखना बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू रिक्रिएट एवरीथिंग, यू आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट।
3: क्या बात है,
4: आप वही सोच रहे हैं कि वो हो
3: जाए, ऐसा हो जाता तो,
4: तो वो भी तो एक चीज की एंजाइटी क्रिएट कर रहा है ना।
3: हर मोमेंट को एंजॉय करो, फिर आगे बढ़ो, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट मोमेंट।
4: एब्सोल्युटली, वो बच्चा करता है, उसको किसी भी चीज की एंटिसिपेशन नहीं होती।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर, हमारे पास एक सवाल आया है, वॉइस नोट भेजा उन्होंने अहमदाबाद से, तो वो वॉइस नोट मैं आपके लिए चला रहा हूँ।
4: हेलो, नमस्कार विशाल भाई एंड बीके सिस्टर श्रेया जी, और मैं पार्शियल ब्लाइंड बना हूँ 3 साल से, और अभी मेरी फैमिली में हम 3 लोग हैं, मेरा बच्चा, मैं और मेरी मिसिस। मगर मुझे बारंबार ये फील होता है कि वो लोग पहले मुझे जितना रिस्पेक्ट और मुझे जितना कवरेज करते थे या मुझे जितना कोऑपरेट करते थे वो नहीं कर रहे, और हमारे तीनों में बार बार इसी वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। किसी को किसी के ऊपर खुली हुई बात पर भरोसा नहीं पड़ता और अच्छी भी नहीं लगती, कॉन्स्टेंट झगड़े टंटे होते रहते हैं। तो उसके लिए आप ही सजेस्ट कीजिए अब क्या करें, क्योंकि मैं अब डिपेंडेंट हो गया हूँ, तो उनके सिवा चलता नहीं है और उनके सिवा रहेगा रह सकूंगा भी नहीं, और उनको ये एहसास है इसलिए वो मुझे बार बार परेशान कर रहे हो या मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो वैसा मैं फील कर रहा हूँ। तो उसका कुछ सुझाव दीजिए ना प्लीज, कि जिससे मैं स्टेबल रह सकूं, वरना मुझे सुसाइडल अटेम्प्ट करने का या तो कुछ घर छोड़ के भाग जाने का ऐसा परेशानियां लगती है, तो सॉल्यूशन दीजिए प्लीज।
5: जो ये कह रहे हैं इनके बात से ऐसा लगता है कि मन इनका बहुत ज्यादा परेशान है। इसमें 2 चीजों की जरूरत है। जब हम कहते हैं हमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो ये थोड़ी बड़ी बात होती है, हम उसको रियलाइज कर रहे हैं, हमें वो चीज़ ऑलरेडी आ रही है, बना उतने तक पहुंच गई है। थोड़ा सा इसमें अगर हम थेरेपी की हेल्प लेते हैं तो अच्छा होता है।
3: अच्छा।
5: हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि लोगों का बिहेवियर हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। पहली बात, रिश्ते जो होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। तो अगर हमारे घर के ही रिश्ते ठीक नहीं है, वरना वो भी हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, हम भी उनके लिए गलत सोच रहे हैं। एक व्यक्ति भी अगर सही सोचना शुरू करे
3: उससे भी फर्क पड़ता है।
5: इट इज लाइक थ्रोइंग व्हाइट बॉल। अगर हम उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, ये एफर्ट करें, वो वाइब्रेशन धीरे धीरे उनके मन को भी चेंज करेगा, उनको भी ट्रांसफॉर्म करेगा। सहयोग तब मिलता है जब रिश्ते में सामने वाला हमारे से संतुष्ट होता है। और संतुष्ट के लिए बहुत सिंपल चीज परमात्मा कहता है, रिगार्ड दो रिगार्ड लो। छोटों को स्नेह, बड़े को सम्मान, इतना ही याद रखना है। छोटे हैं उनको प्यार दे रहे हैं, बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, धीरे धीरे वो रिश्ता ठीक हो जाता है। रिश्ता ठीक हो जाता है तो सहयोग है, जो भी आपको कोऑपरेशन है वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: कभी कभी किसी सिचुएशन को दूसरे नजरिए से देखना जिंदगी में नए बदलाव की शुरुआत कैसे बन सकता है, आइए समझे।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, जब ये कॉमिक वाली बात हो रही थी मेरे दोस्त की, तो आपने जो कहा कि देखिए बच्चा जैसे बने रहिए, आपको जो पसंद है वो करिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसे माहौल में हम होते हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, शायद कभी कभी एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा टॉक्सिक है या पॉलिटिकली चार्ज्ड है, पॉलिटिक्स होता है, और उस केस में आपके परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता, आपको शायद नीचा दिखाया जाता है, तो ऐसे केस में क्या करें।
5: See, one thing that I've realized is कि सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है कि कई बार आपको लगता है आप भी कई पर्सपेक्टिव राइट है और दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है वो गलत है, इसीलिए ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होने का कारण ही है कि आप एक लेंस से देखते हैं और आपको लगता है मैं राइट हूँ, शायद जो दूसरा कुछ ऐसा कॉमिक पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है वो गलत है। इसीलिए आप जो करते हैं आपको उसके ऊपर कंप्लीट फेथ होना चाहिए। आपके पास इनफ रीजनिंग होने चाहिए कि मैं वो क्यों कर रहा हूँ। आप कन्विंस्ड होने चाहिए, देन यू विल नेवर बी पुल्ड डाउन बाय अनदर पर्सन। वो कितना भी कहेंगे पर आपके पास रीजनिंग है ना, आप उनको कह सकते हैं या अपने को कह सकते हैं कि दिस गिव्स मी जॉय, दिस गिव्स मी पर्सपेक्टिव, दिस गिव्स मी मोर अंडरस्टैंडिंग,
4: तो
5: वो आपको क्रिएटिव फ्रीडम, तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। देयर आर सो मेनी पीपल, आपने बहुत सुंदर कहा कि जब वो कहीं पर इस तरह के फैंटेसी वर्ल्ड में थोड़े समय के लिए चले जाते हैं दे बिकम क्रिएटिवली चार्ज्ड, उनको एक नया आइडिया, क्योंकि मन बहुत उथल पथल में होता है। कभी कभी इस प्रकार का कोई हॉबी है, किसी के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी के लिए कॉमिक पढ़ना होता है, किसी के लिए बीच के पास जाकर के बैठना होता है, दैट गिव्स देम अ न्यू आइडिया।
4: लेकिन कभी कभी क्या होता है सिस्टर, इसको गलत बताया जाता है। जैसे मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जानता हूँ जहाँ पर आप ऑफिस में फेसबुक नहीं यूज कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी नहीं यूज कर सकते, आप इंस्टाग्राम पे नहीं जा सकते, और मुझे लगता है आप जितना बांधने की कोशिश करोगे लोगों को वो उतने ही तरीके निकाल लेंगे आपके रूल्स को नहीं फॉलो करने के, तो काम तो आपका वैसे ही नहीं हो रहा है। ये सही तरीका है एक ऑफिस को चलाने का?
5: सही तरीका होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ हर एक अपने आप डिसिप्लिन से चले, वो सही तरीका होता है। वेयर यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ आपको कुछ बार बार टोकना नहीं पड़ता, नोट नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा किसी को देखना नहीं पड़ता, पर हर एक विलिंगली, चाहे वो एक मेडिटेशन सेंटर है, चाहे एक ऑफिस है, चाहे वो घर है, हर जगह कुछ डिसिप्लिन्स की जरूरत है,
4: वो विलिंगली कंट्रीब्यूट करे।
5: वो एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि उनको खुद से दिल हो वो करने की। लेकिन जब वो एनवायरनमेंट नहीं होता तो फिर चाहे वर्ल्ड के लेवल पर, घर के लेवल पर एक जो कॉमन चीज दिखाई देती है, नियम नियम नियम, रूल रूल रूल, व्यक्ति एनीबडी एज अ सोल वी वांट टू बी फ्री, वी डोंट वांट टू बी बाउंड बाय टू मेनी रूल्स। वो रूल्स फिर वो कंट्रोल में जाता है, कंट्रोल आपको बॉन्डेज की फीलिंग दिलाता है, फिर वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक होने लग जाता है। सो क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ कोई अपने आप ही गलत नहीं करे।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: जब एम्प्लॉयज किसी लीडर के डिसीजंस का विरोध करने लगे तो एक अच्छा लीडर उस परिस्थिति को कैसे संभाले, आइए समझें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर यूर राइट, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है जहाँ रोल के बेसिस पे आपको लगता है क्योंकि मैं बॉस हूँ सबको मेरी बात माननी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपके पास एक विजन होता है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी कोई नई चीज लाने की कोशिश की जाती है तो ज्यादातर लोग रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि वो यूज्ड टू नहीं होते। तो उस केस में कभी कभी जो सीईओ होता है या जो ओनर होता है या जो भी बॉस होता है उनको ये बोलना पड़ता है कि भैया देखो ऐसा है, यही हम करेंगे, तुम करके तो देखो एक बार।
5: नहीं, उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, अगर आपका विजन बिल्कुल आपको पता है कि राइट है, क्योंकि अगर आप लीडर हैं तो आप विजनरी हैं, फास्ट साइटेड हैं, आप वो देख सकते हैं जो शायद आपकी टीम नहीं देख सकती, इसीलिए आप उस पोजिशन पर हैं। पर जब आप वो चीज पहली बार शेयर करते हैं वो रेजिस्टेंस आता है क्योंकि वो चीज नहीं देख पाते। आपको फर्स्ट मीटिंग में उस रेजिस्टेंस के लिए तैयार होना चाहिए और आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम यही करें।

0: वो कंट्रोल है. आपको उस मीटिंग में प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि ये शायद वो चीज नहीं देख सकते तो शायद रेजिस्ट करेंगे, और बहुत अपनी बात कह करके टाइम देना चाहिए. देन यू शुड हैव अनदर मीटिंग. आप अपने बात पर टिके रहे वो बात नहीं है, पर आप समय दें कि वो आपके पर्सपेक्टिव को समझ सके और आप सेम पेज पर आ सके. उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम बहुत वैल्यूएबल है. क्योंकि अगर आपका विजन बहुत सही भी है पर टीम अलाइंड नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी. क्योंकि सफल वो तभी होगा क्योंकि सब मिल करके करेंगे. संगठन की बहुत शक्ति है. वो गोवर्धन पर्वत के लिए कहते हैं कि सबकी एक एक उंगली से भी पहाड़ उठ गया. अगर वो संगठन की शक्ति नहीं होगी तो विजन ठीक होकर के भी फेल हो जाएगा. आपको लगेगा विजन गलत था, विजन गलत नहीं था लेकिन टीम अलाइंड नहीं थी. तो उसमें थोड़ा स्पेस देना पड़ता है कि एवरीबॉडी कम्स ऑन वन पेज.
1: बिल्कुल. वैसे भी मैराथन है, सोलो रेस तो है नहीं.
0: सोलो रेस नहीं है, टीम के बिना नहीं कर सकते. मालिक बन करके राय दें लेकिन देन स्पेस दें. सी, हमेशा करना वही चाहिए जो मेजोरिटी को ठीक लगता है. सफलता उसमें मिलती है. आपका जो इंटेंट होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वही हो. इंटेंट होना चाहिए जो, जैसे यहाँ पर हो सकता है कंपनी के भले के लिए क्या है, घर में हो सकता है परिवार के भले के लिए क्या है, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में हो सकता है, जो हमारा एम है. जब आप ऐसा करके टीम में या आप मीटिंग करते हैं तो फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरा आइडिया स्वीकार किया गया या उसका किया गया. इट इज नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट अस टुगेदर ट्राइंग टू हैव वन एम. फिर उसके अंदर सफलता मिलती है.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: हो पाएगा. कौन बोला, कौन बोला.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। वो लिखती हैं कि मैं भगवान में आस्था रखती हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त जीवन की तकलीफों के कारण ईश्वर पर विश्वास खो चुके हैं। उनका सवाल है, अगर आज भी परेशानियां पिछले जन्म के कर्मों का फल है तो बिना याद हुए उन कर्मों की सजा क्यों? फिर इस जन्म के अच्छे कर्मों और प्रार्थना का क्या महत्व है, और क्या हमारे वर्तमान कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है या वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है?
3: तो ये दो तीन सवाल हैं। पहली चीज तो कर्म शरीर नहीं करता है।
2: हाँ।
3: कर्म आत्मा करती है, इसलिए टाइटल भी क्या देते हैं, पाप आत्मा पुण्य आत्मा।
2: जी बिल्कुल।
3: तो जो हमें लगता है कि इसी जन्म में हो जाए, ये जन्म केवल एक बॉडी के लिए है। हाँ। बर्थ हुआ, डेथ हुआ।
2: हाँ।
3: पर जो कर्म आत्मा ने किया वो अपने कर्मों का हिसाब किताब कैरी फॉरवर्ड ले जाती है।
2: अच्छा।
3: उसी अनुसार अगला जन्म भी होता है।
2: जी।
3: जन्म में भी आप देखते हैं, आपको वो दिखाई देगा ना। कई बार हम कहते हैं जन्म से ही इसको दिखाई नहीं देता, जन्म से इतना बीमार है, कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है, तो वो पास्ट के कर्मा का भी इम्पैक्ट है। और आगे भी जर्नी में वो कभी ना कभी रिटर्न होंगे, पर कब होंगे वो नहीं पता।
2: नहीं पता।
3: बिकॉज इट इज डन बाय द सोल एंड द रिजल्ट इज गोइंग टू कम बैक टू द सोल। अब अगर मैंने ही कर्म किए और मुझे ही उसको सामना करना है तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, या भगवान को याद करने की क्या जरूरत है? हम भगवान को इसलिए कई बार लोग याद करते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देगा।
2: हाँ।
3: लेकिन भगवान भी इस चीज की समझ देता है कि मैं किसी के कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता।
2: अच्छा, आप ही को करना है।
3: नहीं, अगर आपके बच्चे का होमवर्क है तो आप करेंगे।
2: नहीं, सही बात है।
3: और आप नहीं करेंगे तो आप कोई उनसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो बच्चे का होमवर्क है, बच्चे का होमवर्क बच्चे को ही करना पड़ेगा। आप हेल्प कर सकते हैं,
2: गाइड कर सकते हैं,
3: आपके पास उससे 100 times ज्यादा मना उस चीज की नॉलेज है, वो आपके लिए बहुत इजी है। ABCD भी लिखना है वो बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, आपके लिए बहुत इजी है। तो जैसे मुझे ये समझ होती है कि ये बड़ा चैलेंज है, मैं कमजोर हूँ लेकिन सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो उससे मिला हुआ विजडम समझ भी तो चाहिए ना। आधी चीजों में तो हमें ये भी नहीं पता होता कि करना क्या है, इस चीज का सामना कैसे करना है, इस समय क्या सोचना है, इस समय क्या बोलना है, अपने को क्या समझाना है। तो विजडम, और विजडम के बाद पावर। कई बार सत्य पता होता है लेकिन सत्य पर चलने की ताकत नहीं होती।
2: हाँ, सही बात।
3: तो सत्य और सत्य पर चलने की ताकत वो हमें प्रार्थना से मिलती है, वो भगवान को याद करने से मिलती है कि आगे का कर्म हमारा ठीक हो।
2: बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
3: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या जहां प्यार ज्यादा होता है वहां टकरार भी ज्यादा होना स्वाभाविक है? आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अक्सर कहते हैं कि लड़ाई भी वहाँ घमासान होती है जहाँ प्यार घमासान होता है। बहुत ज्यादा जहाँ प्यार उतनी बड़ी लड़ाई, तो फिर ये कैसे हाथ, how do these go hand in hand?
4: They don't go hand in hand.
3: Okay.
4: They don't go hand in hand because over a period of time, अगर कहीं पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है वो रिश्ता कमजोर होगा।
3: अच्छा।
4: कहीं पर ही एक मार आपको बार बार पड़ रही है, फिजिकल बॉडी में भी अगर एक मार आपको कहीं पर बार बार पड़ रही है, आप ठीक हो जाएंगे, फिर होगा, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर होगा, फिर होगा, फिर वो कहीं ना कहीं चीज ठीक होने के लायक ही नहीं बचेगी, वो कहेंगे बस अभी इसमें कोई होप नहीं है। ऐसे ही किसी रिश्ते में शुरुआत में क्या होता है, ठीक होता है, पहला आर्ग्यूमेंट होता है इतनी बड़ी बात नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर एक ऐसी बात हो जाती है कि कोई बड़ी बात ही नहीं होती है, फिर जब झगड़ा होता है कोई बड़ी बात नहीं, एक शब्द में ही हो जाता है, एक लाइन में ही हो जाता है,
3: पाइल ऑन
4: हो जाता है, फिर वो एकदम ब्रेक हो जाता है, फिर वो कहते हैं दिस इज डन, नाउ इट इज डन, नाउ आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप। एक्चुअली इट इज नॉट अ गुड थिंग कि आप किसी रिश्ते में झगड़े ठीक हों, क्योंकि वो एक बार जब कमजोर होना शुरू हो जाता है तो कोई भी चीज में दरार है और कोई चीज में नहीं दरार है उसमें फर्क तो है ही ना।
3: बिल्कुल।
4: कोई चीज में आपने झगड़ के आप ठीक तो करेंगे, पर आप उसको अगर रूटीन बना ले और आप सोचें कि उसके बाद इसका रिश्ते पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। हर नेगेटिव एनर्जी का ग्रेजुअली रिश्ते के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Celebrate brilliant this 4th of July. RK Jewels IA, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TNC apply.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, लिखते हैं कि हमें हमारे मन को कैसे नियंत्रित रखना चाहिए।
3: सीमा एक फैक्ट्री है जिसका काम है सोचना।
2: हाँ बिल्कुल,
3: और आप कितना भी सोचे वो जीरो थॉट पर नहीं आ सकता।
2: पॉसिबल,
3: मतलब उसको नियंत्रित करने का मतलब ये नहीं है कि वो सोचना बंद कर दे। नियंत्रित डिसिप्लिन करने का मतलब है कि आप जो सोचना चाहें वो सोचे।
2: हाँ,
3: माना आप सोचना चाहते हैं सोल्यूशन के बारे में।
2: हाँ, लेकिन प्रॉब्लम की तरफ ही बार बार जा रहा है, वो सही नहीं।
3: हाँ, तो वो एक साइन है कि आपका मन वीक है
2: जी।
3: बाकी वो सोचना नहीं बंद करेगा किसी हाँ। चीज के बारे में आपको परसों सोचना है पर आपका मन आज ही उस जगह पे जा रहा है। सो उसमें हम कहते हैं कि डिस्ट्रैक्टेड माइंड है
2: जी।
3: उसके लिए फिर अगर हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमें हेल्प करती है कि अपने मन को जहाँ लगाना है, जितना समय के लिए लगाना है, जो सोचना है, जिस थॉट को क्रिएट करना है, हम मालिक बन के कर सके। क्योंकि मेरा मन है तो मेरी जो चीज मेरी होती है वो मेरे कंट्रोल से चलनी चाहिए। वो मेरी कर्मेंद्री है, मैं मालिक हूँ। तो मेरा मन मेरे ऑर्डर से चलना चाहिए। और जैसे हम किसी भी चीज को डिसिप्लिन करते हैं, आज एक बच्चा है वो कहीं भी हाथ लगाता है, कहीं भी जाता है, आप उसको डिसिप्लिन करते हैं ना, नहीं बैठ जाओ, नहीं आप अभी उठो, नहीं नहीं, ऐसे ही मन के साथ बात कर करके उसको डिसिप्लिन करना पड़ता है कि ये गलत नहीं सोचना, सही सोचना है। वो कहेंगे ऐसे क्यों कर रहा है, उसका संस्कार है, मुझे क्या करना है। तो जैसे आप सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ काउंसलिंग करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो मन नियंत्रित हो जाता है।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: कभी तो हंसाए।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
1: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
2: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
1: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
2: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
1: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
3: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर, विद्युत शाह का एक सवाल है कि क्या स्पिरिचुअलिटी हमारी असक्षमताओं को और असफलताओं को छुपाने का इजी तरीका है?
4: एब्सोल्युटली नॉट। उनको एक्सेप्ट करने का तरीका है और एक्सेप्ट करके उनको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है।
3: तो एक्चुअली हमको सक्षम बनाने का तरीका है और सफल बनाने का तरीका है।
4: स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है। तो फिर जो आपको करना है वो आप कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ कर नहीं पाते तो हमें लगता है हम फेलियर है। हम फेलियर नहीं होते। आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट इनएफिशिएंट, और इट इज जस्ट आई हैव नॉट टेकन आउट दैट टाइम टू वर्क ऑन माय सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है।
3: आई डोंट नो ये किस मुद्दे से या मकसद से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो इंसान जिंदगी को आराम से ले रहा होता है या जो सहज मन से चलता है, जो शांत होता है, उसको वीक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद वो सवाल वहां से आ रहा होगा कि क्या ये हम अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
4: कई लोग ऐसा समझते हैं, ये भी एक आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट शादी में भी कई बार टॉक होगा ना, तुमको कहेंगे आप इतना शांत नहीं कर देना इतना। सो समवेयर यू फील कि स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू वेरी कंटेंट इन लाइफ, फिर तो कोई डिजायर नहीं होगी, फिर आप भागेंगे नहीं, फिर आपके गोल्स नहीं होंगे। एक्चुअली वो पर्पस नहीं है। पर्पस क्या होता है कि हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर सके। वैसे भी आप देखें, जैसे एक आप पहाड़ भी चढ़ते हैं तो आपको व्यू तो ऊपर से ही मिलता है ना, लेकिन जो आप बनते हैं वो चढ़ने से बनते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी, आपने जो एंजॉय किया वो समिट पे जो आप जो व्यू है ना, वो बेसिकली रिजल्ट है। वो एक गिफ्ट की तरह है। तो देखने में लगता है कि इट इज द एंड गोल, बट जो आपको बनाता है इट इज ऑलवेज द जर्नी। सो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज फोकसेस ऑन द जर्नी कि मान अपमान है, निंदा स्तुति है, हार जीत है, सफलता असफलता है, इट इज ओके। हर चीज आपको ग्रो करती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग थ्रू इट, इट्स अबाउट ग्रोइंग थ्रू इट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट चैलेंजेस, बट द चैलेंजेस आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ग्रो। तो बेसिकली वो आपको वीक नहीं बनाती, वो तो बहुत आपको स्ट्रांग बनाती है। इनफैक्ट जिस समय पर आप कोलैप्स कर सकते हैं उस समय पर भी आप बहुत स्टेबल खड़े होते हैं। लेटली आई मेट दिस सिस्टर, एक ट्रिप पे थी तो उन्होंने सुनाया कि वो स्पिरिचुअलिटी में उनको सिर्फ 4 months हुए थे चलते हुए। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है, क्लास करती है, और उनकी डॉटर थी जिसको अचानक हेडेक्स होने शुरू हुए।
3: अच्छा।
4: अब वो खुद भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, और एक ही डॉटर है 9th standard में।
3: अच्छा।
4: और पहले की बात सुना रही थी कि उसको काफी हेडेक्स हुए, उन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, चेकअप कराया, डायग्नोस ही नहीं हो पाया क्या हो रहा है, सीवियर हेडेक्स पर डायग्नोस नहीं हो पा रहा। एंड शी सेड कि मैंने अपना जॉब छोड़ा क्योंकि उसको होम स्कूलिंग करनी पड़ी। वो स्कूल नहीं जा पाती थी। देन इट बिकेम सो सीवियर कि वो ब्रश करने गई और वहीं गिर गई, बेहोश हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि वो कर रही है। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 4 years। 4 years she said we went to the best doctors Indore mein, Mumbai mein, everywhere, neurosurgeon, sab kuch, par diagnosis hi nahi hua. 4 years ke baad wo ekdam khatam ho gaya.
3: Achha.
4: Kya bimari thi pata nahi. Then she could go back to college. Abhi wo bhi apni medicine kar rahi hai. But she said wo 4 years ka jo period tha itna challenging. Agar main spiritually strong nahi hoti, stable nahi hoti, to kabhi bhi hum usko cross nahi kar pate, kyunki us samay par usko homeschool karna, treatment dena, उसके दर्द से परे रहना। एंड शी सेड दिस स्टेटमेंट विच वी लर्न, शी सेड हम जो एक लाइन कहते हैं, साक्षी होकर के देखो तो वातावरण का सेक भी नहीं पड़ेगा। मतलब इफ यू आर डिटैच्ड, डिटैच्ड का मतलब बच्चे से डिटैच नहीं, बच्चे के दर्द से बहुत पेनफुल है ना, आपका योर ओन चाइल्ड इज इन सो मच पेन। सो डिटैच आप किससे हो रहे हैं, नेगेटिविटी से, दर्द से, सिचुएशन से नहीं, व्यक्ति से नहीं। हम डिटैचमेंट किससे समझते हैं, व्यक्ति या परिस्थिति से।
3: बहुत खूबसूरत,
4: यू आर इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन, आप उस समय पर हैं। एंड दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी जो है, हम कहते हैं कि अगर आप साक्षी होकर के देखेंगे तो वातावरण का सेक नहीं पड़ेगा, माना जो एनवायरमेंट है
3: उसका
4: इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा. सो स्पिरिचुअलिटी आई फील इज नॉट मेकिंग यू वीक, इट इज रादर गिविंग यू दैट स्ट्रेंथ टू डील विद वट एवर चैलेंजेस यू गोइंग थ्रू.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ऑफिस के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अपनी मेंटल पीस और प्रोफेशनलिज्म को कैसे बनाए रखें, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बहुत कॉमन ट्रेंड बोल सकते हैं, हकीकत भी होगा ही, कि हमारी जो जनरेशन है ना, वो टॉक्सिसिटी को, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो, बॉसेस हो, जो भी हो, उसके लिए एनवायरनमेंट को, मैनेजर्स को, दूसरों को ब्लेम करते हैं। और सही भी है, होता भी होगा, मैं इस बात से बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, सोसाइटी को भी ब्लेम करते हैं, ज़रूर होता होगा। लेकिन इस विक्टिम मेंटालिटी में चलने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं हम अपने आप को देखना छोड़ देते हैं। शायद मैं भी करता ही होऊंगा कभी ना कभी। तो ऐसे लोगों से कौन सा वो हार्श ट्रूथ है जो उनको बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे कहीं ना कहीं हम दूसरों की जगह खुद की तरफ उंगली करें।
4: हार्श ट्रूथ तो ये है कि आप कितना भी चाहें, आप दूसरे को नहीं बदल सकते। आप ब्लेम कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, सारा दिन बैठ करके उनके बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं, कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, पर चेंज तो नहीं कर सकते ना। तो वो चीज़ आपको ही डिप्लीट कर रही है। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है भी, तो पहले तो अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं, ये तो ऐसा है कि सड़क पे इतना ट्रैफिक क्यों है? इतना कैसे बढ़ गया? पहले तो इतना नहीं होता था। चलाएं तो कैसे चलाएं? अब आप कितना भी करें उससे कोई फायदा तो है नहीं। रियलिटी है, ट्रैफिक है और बढ़ रहा है। तो आप ये देखते हैं कि हम उसमें कैसे अपने को सेफ रखें। मुझे ए से बी डेस्टिनेशन पर जाना है, हम ये भी कर सकते हैं, ये कैसे चला रहा है, इसको लाइसेंस कैसे दिया इसको, लेकिन हम वो भी करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हमारा एम तो यही होता है ना कि मुझे सेफली पहुंचना है, मेरी गाड़ी पर डेंट नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही मेरे मन पर भी डेंट नहीं लगना चाहिए। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच करके मेरे मन पर डेंट लग रहा है, वो आपको डिप्लीट कर रहा है। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और आप उसको छोड़ नहीं सकते, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें,
3: अच्छी बात है। और नहीं छोड़
4: कोई
3: सकते,
4: जरूरी तो नहीं है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ही सारा जीवन बिताना है। अगर आपके पास वो पावर है या पॉसिबिलिटी है, पावर भी नहीं, पॉसिबिलिटी है, कई बार वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक होते हैं, आप छोड़ सकते हैं, फैमिली नहीं छोड़ सकते ना, क्या करेंगे? एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स ही हैं, झगड़ते रहते हैं, आर्ग्यू करते रहते हैं, वो अभी अडल्ट नहीं है, कहाँ जाएंगे छोड़ करके? तो फिर अपने को इतना स्ट्रांग बना ले कि आप उस नेगेटिव एनर्जी से अपने को प्रोटेक्ट कर सके।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: गुलाबी साड़ी अनि लाली लाल ला। दिसते में भारी राजा फोटो मजा का।
6: टी सीरीज प्रेजेंट धमाल 4।
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
6: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
8: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
9: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th। There's nothing like the magic of live theater.
10: Celebrate Prayog Theater Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, The Laugh Out Loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar.
9: Join us on Thursday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheater.com.
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 89.9।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। तालेकर कृष्णानंद जी लिखते हैं कि व्हाई डू वी एग्जिस्ट, हमारा अस्तित्व क्यों है।
3: कभी कभी ये हम क्वेश्चन तब पूछते हैं जब थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं।
2: परेशानियां ज्यादा होती तभी,
3: तब लगता है ये क्या है, जीवन ही क्यों बनाया, भगवान ने क्यों बनाया, सुख दुख क्यों बनाया। एक्चुअली पर्पस है लाइफ का टू लिव
2: जी।
3: आप एंजॉय करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप कभी कभी डिफिकल्ट चैलेंजेस हो या उसमें भी आप कुछ सीखते हैं। सो द होल आइडिया इज टू ग्रो, टू लिव, टू एक्सपीरियंस, इसलिए हम एग्जिस्ट करते हैं।
2: वाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत। वैसे एक स्विस साइकियाट्रिस्ट थे, कार्ल जंग नाम था उनका, और वो लिखते हैं कि we are the mere purpose of existing is primarily to light the life of an inner being. तो अगर हम खुद को हमेशा अंदर ऐसी experiences देते रहें जिससे inner power हमारी बढ़ती रहे और अंदर हम बहुत अपने जोत जलाते रहें, तो वो एकमात्र बहुत खूबसूरत तरीका है जीवन जीने का।
3: See, a realization होना कि हम being हैं। हम भले doing mode में ज़्यादा रहते हैं, पर हम being है जिसने एक physical body ली है। और इसीलिए हमारी जो एग्जिस्टिंग का पर्पस है टू बी, टू बी पीसफुल, टू बी लविंग, टू बी कंपैशनेट, टू बी काइंड। और बीइंग में होकर के फिर हम जो भी करते हैं, उस जो भी हमारा रोल होगा, वो बीइंग की पर्सनालिटी उसके अंदर आती है,
2: उससे ऑटोमेटिकली आएगी।
3: एज लॉन्ग एज आप बीइंग का ध्यान रखते हैं, आपको हमेशा फील होगा आपकी लाइफ बहुत फुलफिलिंग है।
2: अच्छा,
3: रोल से मैटर नहीं करेगा। आप नर्स भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आपका कोई भी रोल होगा, बट अगर आप बीइंग में रहकर के वो रोल प्ले करेंगे, यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ एंड योर लाइफ।
2: वेरी नाइस।
3: आप खुद भी जॉयफुली वो रोल प्ले करेंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट सम डिफरेंस। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने की जरूरत नहीं है, जरूरी है कि वो रोल हम कैसे प्ले करते हैं। कभी कभी बहुत सिंपल सा भी रोल होगा, सिंपल सा भी व्यक्ति होगा, वो कुछ ऐसा कह करके चला जाता है या कुछ
2: बहुत प्रोफाउंड होता है,
3: बहुत प्रोफाउंड होता है। सो एज लॉन्ग एज आप बीइंग स्टेज पर हैं, यू आर एग्जिस्टिंग एंड यू आर प्लेइंग योर रोल वंडरफुली।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव. कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
3: गुलाबी साड़ी अणी लाली लाल लाल
4: T series present The Maal 4. Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Esalen.

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TNC apply.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब परिवार आपकी लगातार आलोचना करे तो उस सिचुएशन को इमोशनली मैच्योर तरीके से कैसे हैंडल करें, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, हमारा जो कल्चर है उसमें हमेशा हमें बताया जाता है कि टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, और वो सही तरीका है जीवन जीने का, आगे बढ़ने का। लेकिन कई बार क्या होता है, फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं, लेट्स से पेरेंट्स हैं। मेरी कॉलीग है, उससे मैं बात कर रहा था एंड शी वाज वेरी ट्रबल्ड, और अपने पेरेंट्स से बहुत ट्रबल्ड थी, बहुत रिलेशनशिप्स ब्रेक हो गए थे उनके। तो उसने कहा कि जब मेरे परिवार वाले ही, मेरे पापा मम्मी ही, आई थिंक ज़्यादा पापा से उसको दिक्कत थी, और बोलती मम्मी भी सहायता नहीं करती, जब वो मेरे मेंटल एग्नी का कारण है, वो मुझे कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म करते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन होता है, और शी इज़ इन अ लेट 30s अर्ली 40s। तो वो कह रही थी कि तो कब ये सही होता है कि मैं फैमिली से दूर हो जाऊं, और लोगों की नज़रों में मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जा रही हूं, इसको मद्देनजर ना रखते वक्त हाउ डू आई मेक श्योर कि ये सेल्फ प्रिजर्वेशन कब हो और कब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रही हूँ, इसका फर्क कब कैसे कैसे करें।
4: बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती है। कभी कभी हमें व्यक्ति से दूर होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फिर वो ऐसा लगेगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ना बदलना चाहता है, ना अपनी गलती की अकाउंटेबिलिटी उठाता है
3: जी।
4: और लेकिन वही सेम स्पेस आपके रिश्ते में चाहता है, सो यू आर गिविंग देम अ चांस टू हर्ट यू अगेन। और इसीलिए आई फील चांस तो जरूर देना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती करी है, आप एक चांस देते हैं, आप दो भी देते हैं, आप तीन भी देते हैं, अगर आप देखते हैं कि सामने वाला रियलाइज कर रहा है और बदलना चाह रहा है तो जरूर देना चाहिए। पर अगर सामने वाले को लगता ही नहीं है कि वो गलत है एंड इट इज इम्पैक्टिंग यू, फिर आप कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करते हैं। बाउंड्री सेट करने का मतलब होता है आप उतने क्लोज नहीं हैं, आप उसी सेम बिजनेस पार्टनर के साथ दोबारा बिजनेस नहीं करते हैं, आप जिसके साथ सब कुछ शेयर करते थे अब आप नहीं करते हैं, आपको पता है वो उस चीज़ का एडवांटेज उठा लेगा, लेकिन आपके मन में उनके लिए गुड विशेज है। फॉरगिवनेस इज फॉर माई सेल्फ, इट इज नॉट फॉर यू।
3: ये बात आप बहुत सही कह रहे हो, इट्स मेकिंग सेंस आल्सो। लेकिन जो मेरी कोलीग का सवाल था वो ये था कि कब ये सेल्फ प्रिजर्वेशन की तरफ जा रहा है और कहाँ ऐसा लगने लगेगा कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हूँ कि कुछ भी करूँ लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे।
4: रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डूइंग ना,
3: बिल्कुल।
4: आपकी कुछ डूइंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी,
3: जो काम करना आप करते
4: वो तो करना ही है, क्योंकि उसमें नहीं तो हमारा रॉन्ग कर्मा बनता है।
3: बहुत बढ़िया।
4: एज अ चाइल्ड अगर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट के प्रति है, ओल्ड एज में उनका ध्यान रखना, उनके कोई मेडिकल बिल्स पे करना या जो भी है एक्स वाई जेड, अगर वो मेरा फर्ज है
3: तो वो करो,
4: फर्ज से पीछे नहीं हटना।
3: लेकिन इमोशनली बाउंड्री आप बना लें।
4: हाँ, आप इमोशनली थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने ओवर अ पीरियड ट्राई करके देख लिया है
3: फिर भी नहीं हुआ।
4: हाँ, कभी कभी फिर उतनी कॉन्वर्सेशंस करो, आर्ग्यूमेंट्स में चले जाएं, कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएं, उससे बेटर होता है न्यारा प्यारा होना।
3: बहुत
4: आप न्यारे भी हैं, लेकिन आप अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आप फर्ज नहीं निभाएंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: There's nothing like the magic of live theatre.
5: Celebrate Priyog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, the laugh out loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar.
4: Join us on Thursday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheatre.com.
6: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
7: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे। मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया। ध्रुव मेहता जी लिखते हैं कि मुझे आपके हेल्प और गाइडेंस की जरूरत है। 1.5 साल हो गए मेरी शादी को और मेरी बीवी जो है वो बहुत इमोशनल व्यक्ति है। वो हर बात पे बहुत जल्दी से रो देती है। अगर हमारा छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ तो रो देती है, उसकी तबीयत खराब है तो रो देती है, अगर उसे कुछ कोई बात कह देता है तो भी वो रो देती है। इस बात से मैं थोड़ा परेशान हूँ और मुझे किसी को रोते हुए हैंडल करना मुश्किल लगता है। जब छोटे बच्चे भी किसी चीज़ के लिए रोते हैं तो मैं हैंडल नहीं कर पाता, मैं परेशान हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ। तो ऐसे हाल में मैं क्या करूँ?
3: अगर कोई बार बार रोता है
2: जी
3: तो मन से कमजोर है।
2: जी बिल्कुल।
3: तो जरूरी होता है कि अगर कोई कमजोर है, जैसे कोई फिजिकली भी वीक होता है
2: जी,
3: तो हमें उसके प्रति थोड़ा रहम होना चाहिए।
2: हाँ।
3: लेकिन उनको बार बार गुस्सा आता है।
2: हाँ।
3: That is also a sign of being emotionally weak.
2: तो अगर मैं वीक हूँ और आप भी वीक है तो मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकते।
3: ऑल्सो हमें कई बार लगता है रो रहा है वो वीक है।
2: हाँ।
3: गुस्सा कर रहा है वो बहुत पावरफुल है।
2: हाँ, ये अक्सर क्योंकि हमको लगता है गुस्सा कर रहा है तो ये पावरफुल पोजीशन में होगा
3: या पावरफुल है। बट दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग योर इमोशन। दोनों ही नेगेटिव।
2: हाँ।
3: आप अगर रो रहे हैं
2: तो भी
3: आप उस चीज को फेस नहीं कर पा रहे हैं।
2: हाँ।
3: तो आप रो रहे हैं।
2: सही बात है।
3: आप भी किसी चैलेंज को फेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप गुस्सा कर रहे हैं।
2: वो भी आप
3: पर है तो दोनों नेगेटिव एनर्जी।
2: हाँ।
3: इसलिए दोनों को इमोशनली स्ट्रांग होने की जरूरत है और एक दूसरे के प्रति कंपैशनेट होने की जरूरत है। अगेन, बार बार रोना अच्छी चीज नहीं है।

0: बार बार रोना ये भी साइन हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हैं, और कभी कभी फिर उसमें हमें डॉक्टर की भी मदद लगती है।
1: बिल्कुल।
0: देखो, सैड होना और ठीक हो जाना वो फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सैड रहना, अपने इमोशंस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होना, छोटी सी बात को भी सहन नहीं कर पाना, फिर हो सकता है कि हमें इसमें किसी एक्सपर्ट के भी हेल्प लगे। बाकी तो अगर कोई ऐसा होता है तो कंपैशनेट होने की जरूरत है। गिरे हुए को और नहीं गिराया जाता, गिरे हुए को उठाना पड़ता है। हमें एंगर स्ट्रेंथ लगती है, पर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हमेशा किसी वीक व्यक्ति को ऊपर उठाएगा, उसको एम्पावर करेगा, उसको और नहीं गिराएगा। बाकी जो उन्होंने एक चीज और कही कि कोई छोटे बच्चे भी रोते हैं तो उनको गुस्सा आता है क्योंकि वो अटेंशन सीख कर रहे हैं, बड़े भी इसीलिए रोते हैं, उनको पता नहीं होता।
1: अरे वाह, क्या बात, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली हाँ, अटेंशन के लिए रो रहे हैं।
0: हाँ, पर उनको भी ये इतना आपकी नेचुरल नेचर हो चुकी होती है, आपको रियलाइज नहीं होता। अगर रोने से वो काम हो जाता है,
1: हाँ, तो आप
0: या रोने से आपको सिंपैथी मिलती है,
1: रोएंगे आप,
0: या आपको रोने से कोई एडवांटेज है, तो फिर आप उसको नेचर बना लेते हैं।
1: सही बात है।
0: तो वो चीज भी होती है, बट देन है तो वीकनेस, और वीकनेस को ओवरकम करना चाहिए। कोई बात है भी, आपको स्टेबिलिटी से वो बात कहनी चाहिए।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या परिवार का प्यार और इमोशंस हमारे बड़े डिसीजंस को प्रभावित करते हैं? आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, हमारा जो कल्चर है बहुत खूबसूरत कल्चर है, मुझे बहुत प्यार है इस बारे में। मतलब कहीं और अगर दूसरा जन्म भी लेना पड़े किस, तो मैं यहीं पे आके जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि कमाल का हमारा देश है, इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन हमारे कल्चर में ना ज्यादातर एक्सपेक्टेशन को प्यार के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, पेश किया जाता है। एग्जाम्पल कि तुम्हें यही करियर लेना चाहिए, तुम उसी लड़के से शादी करोगी जिसे मैं कहता हूँ। तो मेरे एक महिला दोस्त है, उनसे बात कर रहा था, उसकी पहली मैरिज जो है वो चली नहीं, तो वो टूट गई, अब वो दूसरे किसी इंसान से प्यार कर रही है एंड शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू हिम। तो उसके पिताजी कहते हैं, पहली तो तुम्हारी शादी टूट चुकी है, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो चुकी है, अब दूसरी वाली किससे करनी है वो मैं तय करूंगा। और मेरी महिला दोस्त कह रही है कि अरे मेरी जिंदगी है, मैं डिसाइड करूंगी ना, आप कहां से इसमें बीच में घुस गए। मेरे मन में सवाल आया कि जेन्युइन पेरेंटल लव और इमोशनल मैनिपुलेशन में एक्चुअली फर्क कहाँ है, लव और कंट्रोल का फर्क क्या है?
4: जहाँ कंट्रोल है वहाँ लव है ही नहीं। है ही नहीं वो लव, आपको कभी भी लव्ड फील ही नहीं होगा। कंट्रोल आता है फियर से,
3: कंट्रोल आता है फियर से कि छूट जाएगा, चला जाएगा।
4: नहीं, यहाँ पर जो आप केस कह रहे हैं कि वो बेटी के साथ उनका लव होता है बहुत प्योर, लेकिन उसमें थोड़ी डिटैचमेंट होती है। हमारा लव नहीं होता, हमारी अटैचमेंट होती है।
3: अच्छा।
4: और जब रिश्ते में अटैचमेंट होती है तो जिस समय वो बेटी एक डिफिकल्ट पीरियड से गुजरी होंगी, फादर ने भी पेन एक्सपीरियंस किया।
3: हाँ, क्योंकि घर टूट रहा है तो उनको क्या ही अच्छा लगेगा।
4: अब जब फादर ने पेन एक्सपीरियंस किया तो उनको फियर रहता है
3: कि फिर से हो जाएगा।
4: हाँ, सो इट इज नॉट फेयर, इट्स वेरी सटल। कंसर्न बेटी का भी है लेकिन स्वार्थ अपना भी है।
3: लेकिन आपने क्यों कहा कि जहाँ कंट्रोल होता है वह लव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वो कंट्रोलिंग बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार बहुत है बेटी से।
4: नहीं, कंट्रोल जब आप किसी को करेंगे तो आप डोमिनेट करेंगे।
3: हाँ।
4: तो वो सफोकेट होगा ना।
3: हाँ,
4: वो प्यार नहीं होता
3: है। हाँ।
4: प्यार के अंदर क्या होगा, ठीक है आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो दोनों में वर्ड्स का ही फर्क नहीं है।
3: बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते।
4: कंट्रोल का मतलब होता है कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा।
3: हाँ, एक वो तरीका और दूसरा है ऐसा करना चाहिए।
4: आप अपने अनुभव से कहते हैं, देखो पहले भी ऐसा हुआ था, इसका ये नुकसान है, इसका ऐसा है। आप इंस्पायर और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो आपका प्यार है। उसके बाद भी एज एन इंडिपेंडेंट वो जो भी चॉइस लेते हैं वो उनका है।
3: ठीक है, समझा।
4: आप इन्फ्लुएंस करते हैं उनके भले के लिए, आप कंट्रोल करते हैं क्योंकि
3: अपने भले के लिए।
4: हाँ, आपका स्वार्थ होता है, आपको डर होता है।
3: हाँ।
4: कि दोबारा अगर इनसे गलती हो गई, दोबारा अगर ये दर्द से गुजरेंगे तो यही नहीं गुजरेंगे। वो भले कह रही है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा कॉन्सिक्वेंस और मैं रेडी हूँ, पर समवेयर अटैचमेंट में क्या होता है कि आप जिससे गुजरेंगे उससे मैं भी गुजरूंगा, वो मुझे पता नहीं होता।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है कि 4 साल पहले मेरी एक जगह एंगेजमेंट फिक्स हुई थी, लेकिन मैंने लड़के वालों के साथ थोड़ा समय मांगा था, इसी बात पे शायद उन्हें बुरा लगा और उन्होंने रिश्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ाया। क्या आप बता सकते हैं कि उस एंगेजमेंट का टूटना पहले से तय था या उसमें मेरी कोई गलती थी?
3: देखो, दो चीजें हैं, कर्म और भाग्य।
2: जी,
3: कर्म उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास चॉइस होती है।
2: हाँ।
3: भाग्य उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास चॉइस नहीं होती। तो यहाँ पर आपने जो किया वो आपका कर्म था, आपने चूज किया।
2: जी।
3: लेकिन आपने वो किया जो आपको राइट लगा।
2: बिल्कुल।
3: उसके बाद उसका जो रिजल्ट हुआ, उस कॉन्सिक्वेंस को एक्सेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको टाइम चाहिए था तो आपको चाहिए था।
2: हाँ।
3: आज आप रिग्रेट कर रहे हैं कि शायद मैं टाइम न लेती तो ये एंगेजमेंट चल जाती।
2: वो तो पता भी नहीं,
3: नहीं, कल आपको शायद इस चीज का रिग्रेट होता कि मैंने टाइम क्यों नहीं लिया।
2: सही बात। हाँ, बिल्कुल।
3: अगर कोई और बात हो जाती तो आपको लगता। तो अगर आपका कोई प्रिंसिपल है कि किसी नए रिश्ते में जाने से पहले आपको थोड़ा टाइम चाहिए, इट इज ओके, पर वो आपकी चॉइस थी। उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस निकल सकता है। हम चूज भी करना चाहते हैं पर हम कॉन्सिक्वेंस भी नहीं फेस करना चाहते।
2: सो
3: चूज करें, जो आपको ठीक लगता है आप चूज करें, पर उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है उसको फेस करने के लिए भी अपनी ताकत बढ़ाएं।
2: वेरी नाइस। सो बेसिकली यू कांट चेंज व्हाट हैपेंड बट यू कैन चूज हाउ टू स्टेप फॉरवर्ड।
3: मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मैंने आपके लिए कम्फर्टेबल क्या है। अगर वो टाइम आपके लिए कम्फर्टेबल था तो आप अगर हर चीज में अपने प्रिंसिपल्स के साथ लेट गो करते जाएंगे तो फिर कल को आप किसी रिश्ते में भी खुश नहीं रह पाएंगे।
2: सही बात है, ये मन पलटता रहेगा इधर उधर।
3: कॉन्सिक्वेंस को फेस करने के ताकत होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज आप जो कर रहे हैं आपको कन्विक्शन है कि ये राइट है और ये मेरे लिए जरूरी है।
2: सही बात।
3: दिस इज माई वे ऑफ लिविंग एंड आई एम कम्फर्टेबल दिस वे। तो अगर आप अपने उसमें नहीं करेंगे तो भी आपको सफोकेट होगा, फिर वो भाग्य बन जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TNC apply.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर गिनी विधानी का एक सवाल इंस्टाग्राम के हैंडल पे आया कि आज लोग मेडिटेशन और इनर ग्रोथ से ज्यादा AI और टेक्नोलॉजी को महत्व दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो भविष्य कैसा होगा? टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बट मेंटली अनरेस्ट रहेगा, या फिर दोनों के बीच कोई बैलेंस बन पाएगा?
4: बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा ना। साधना और साधन दोनों जरूरी है।
3: अरे वाह, क्या बात है, साधना और साधन दोनों जरूरी है। बहुत खूबसूरत।
4: और साधना वाला ही साधन पर कभी डिपेंडेंट नहीं होगा।
3: क्या बात, वेरी नाइस।
4: तो माना जो साधना करते हैं, जो इनर वर्क करते हैं, वो इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, वो साधन को यूज करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा उनके लिए सर्वेंट है। वो टेक्नोलॉजी को कभी भी अपना मास्टर नहीं बनने देते, वो टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं बनते। तो ये एक पर्सनल लेवल पर हमें दोनों को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे।
3: क्या बात?
4: वो भी पॉसिबल नहीं है। अभी सब कुछ टेक्नोलॉजी पर होता है, वो लाइफ को इजी बनाते हैं, लेकिन साधना और साधन का बैलेंस रख।
3: क्या बात है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि बाहर की दौड़ में खुद को नहीं खोना, अंदर की जो कश्मकश है और अंदर जो चल रहा है वही असली खजाना है।
4: आपकी बात बहुत सुंदर है, लेकिन एक और चीज, हमें कई बार लगता है कि बाहर की प्राप्ति से अंदर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी।
3: उल्टा होता है।
4: नहीं, दोनों पर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक गार्डन आपके घर के बाहर है, एक गार्डन आपके घर के पीछे है। आप सोचे, बाहर वाले जो घर के आगे जो दिखाई दे रहा है, अगर उसके ऊपर मेहनत कर ले, वो हरा भरा है, उसमें बहुत सुंदर
3: फूल, पीछे वाले में ऐसा जरूर
4: नहीं, ऐसे नहीं होता।
3: मेहनत तो उस पर भी करनी
4: पड़ेगी। तो हम अगर अपने को बहुत एडवांस बना लें, टेक्नोलॉजी से अपडेट रखें, AI भी चला लेते हैं,
3: nice.
4: तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप पोजीशन में ग्रो कर सकते हैं, आप मटेरियल लेवल पर ग्रो कर सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उस ग्रोथ के साथ साथ आपके इनर ग्रोथ, आपके जो कंटेंटमेंट है, पीस है, कंपैशन nice. है, काइंडनेस है, वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे।
3: बहुत बढ़िया।
4: तो ये दोनों अलग चीज है,
3: और दोनों पे काम करना,
4: दोनों पर काम करना जरूरी।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ಮನ ಕಸ್ತೂರಿ ರೇ ಜಗದಸ್ತೂರಿ ರೇ ಮನ ಕಸ್ತೂರಿ.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। निशु मरमत लिखती हैं कि मेरा एक सवाल है आपसे, जो ये भविष्य मलिका में लिखा होता है कि आने वाला टाइम बहुत बुरा है मानव के लिए, सब लोग डरे हुए हैं, इसको पॉजिटिव वाइब्स में कैसे लाया जाए?
3: आने वाला टाइम डिफिकल्ट है या बुरा है वो तो किसी को भी नहीं पता, पर जी, आपको फील होता है। उसका रीजन है क्योंकि हर जगह भय है, चिंता है, वरी है, एंगर है। जब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर जगह देख रहे हैं, पायस से पायस इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सत्युग तो नहीं हो सकता, ये कलयुग है। अब किसी भी चीज से या तो आप डर सकते हैं या आप उसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम है, आप एग्जाम से डर भी सकते हैं
2: या पढ़ सकते हैं,
3: या आप इतने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम देना है। अब उसी एग्जाम में किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, उसी एग्जाम में कोई बच्चा लुक फॉरवर्ड करता है,
2: सही बात है,
3: कि एग्जाम आए तो मैं वो एग्जाम दूं क्योंकि उसने प्रिपेयर किया है। तो कल क्या होगा वो हमें से किसी को भी नहीं पता, पर प्रिपरेशन ये होती है कि दिखाई दे रहा है अनसर्टन है, किसी भी समय जॉब छूट जाती है, अचानक बीमारी आ जाती है, डरने की जगह मेरे साथ कुछ होना जाए, मेरे साथ कुछ होना जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, आप अपने को इतना स्टेबल बनाए कि जो होगा विल फेस इट ना, जो होगा विल सी, समस्या नहीं समाधान ढूंढेंगे।
2: मुझे अब्राहम लिंकन की बहुत कमाल की लाइनें याद आ गई। वो कहते हैं द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर is to create it.
3: Yeah, absolutely.
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दिस ईयर। पठान के इस गाने ने पागलपन मचाया, इट स्टेड ऑन नंबर 1 फॉर सो मेनी वीक्स। लेकिन अब नई फिल्मों के आते खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा। दिस वीक इट्स ऑन नंबर 7 फ्रॉम नंबर 4 लास्ट वीक। एंड माई नेम इज सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची डॉट 20। एंड ये जो दो दोस्त है मेरे, केतन जो खुद एक रेडियो जॉकी रह चुका है एंड यशराज मुखाटे, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीज टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता।

I hate it so much that I actually love it. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. इट्स फ्रॉम मिस्टर पंजाबी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िये नी तेरी. इट्स मेकिंग इट्स डेब्यू हियर ऑन नंबर 6 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन. नंबर 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत।
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मतलब मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। चुप कर ऐसा तूने।
2: पापा को ऐसे किस बात का मामला? मुझे ये भी नहीं
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी
3: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्याजी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
9: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
10: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस्त जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू झूठी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने। एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की है, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है, एंड सो इज नुसरत। सो लव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा, एंड तब तू झूठी मैं मक्कार हैपेंड। मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन, एंड द वन थिंग दैट इज रियली अमेजिंग इज द न्यू पेयरिंग ऑफ द टू कपूर्स, रणबीर एंड श्रद्धा। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था। एंड द बेस्ट पार्ट, दे बोथ एक्चुअली लुक गुड टुगेदर। बट दोनों को एक दूसरे के साथ फिल्म करना क्या रास आया, जान लेते हैं।
1: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor, and I've always admired his work. And ये experience करने के लिए on set with him बहुत मजा आया, and he's really superb.
2: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born, because our parents are friendly, and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love.
3: Thank you.
2: I give you credit for this also.
0: I really like their chemistry and I hope it does work some magic. And क्या है कि प्रीतम दा ने जो गाना बनाया है उसका जोन, उसकी वाइब एक और गाने से काफी मिलती जुलती है। बट उससे पहले आपको बता दूं इस हफ्ते का गाना नंबर 3 कौन सा है।
4: तुम्हें जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए।
0: अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो गाना है तेरे प्यार में, इट डज साउंड लाइक अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव। जो फीलिंग, जो वाइब थी लव आजकल 2 के गाने में, आई फाउंड इट हियर एज वेल। एंड दैट इज व्हाई मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक है हाँ मैं गलत, वंस अगेन बाय अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा ऑन द मिर्ची डॉट 20 विद मी सुरेन।

0: इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था, इतनी जल्दी इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए। प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट I don't think प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है। एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year-old करियर, और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
1: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है, बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो भूलभुलैया 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो, अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है, एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन, मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग, एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक। एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन, बी इट सोनू टीटू का म्यूजिक, बी इट भूल भुलैया का म्यूजिक, और बी इट एनी अदर फिल्म ऑफ माइन, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी, तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में, एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को ये, तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया, विच मीन्स ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। Alright, so now the number one song, मिर्ची टॉप 20 पे we have a new king। जिस गाने ने पिछले हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे। Riding the Nostalgia Express, तनिष बागची की एक और उपज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। Talks about your taste more than mine. Check it out. You're on the Mirchi Top 20. I am Surin.
2: Number 1.

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: इंटरेस्टिंगली उदित जी ने अपने हिस्से तो फिर गाए हैं बट अभिजीत दा के पुराने हिस्से रिटेन किए गए हैं। मे बी ना कर दी उन्होंने, मे बी डिडंट केयर। इस हफ्ते का नंबर वन गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन इस शो मिर्ची टॉप 20 का खिलाड़ी अब आपको कहता है बाय बाय। आई बी बैक सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम। मेरे डीएम्स में स्लाइड करने के लिए सुरेन सुरेन ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम सुरेन ओवर एंड आउट।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TNC apply.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello.
1: हेलो
2: हाँ
1: बोलो कौन
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोल कौन रहा है
2: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
1: बोल कौन रहे हो
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
1: हाँ बोलो
2: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
1: कब आया था कब घुसा अंदर
2: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
1: तू कहाँ से रहा है तो नहीं हो गया है
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
2: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
1: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
1: सीवर में मरा रहा है तू
2: गाली तो मत दो
1: हेलो
2: हेलो
1: फिर फोन कर दिया तूने
2: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
1: क्या बोलो
2: कुकुड़ुकु
3: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका बन गया
1: कुकुड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट इट्स हॉट
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
12: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
13: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
12: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
14: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the U.S.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: Tera kya hoga, Kalya?
17: Sardar, main aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab... Mirchi ka
18: Radio Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्टनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
11: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
5: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

0: अरे मोनू, लड़की लोग का नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ मिलने पड़ते हैं यार।
1: ये पापड़ का प्यार से क्या ताल्लुक
0: यार? अरे कहावत है यार।

0: ગુડ મોર્નિંગ, સાંભળી રહ્યા છો મિર્ચી, હું છું કૃતાર્થ. જેટલી અગત્યતા શબ્દોની હોય છે એટલી જ અગત્યતા ન બોલાયેલા શબ્દોની પણ હોય છે. ન બોલાયેલા શબ્દો એટલે શું? તો કે મૌન. તમને યાદ પણ આવે છે કે તમે છેલ્લે મૌન ધારણ કરીને ખાલી સાંભળ્યું ક્યારે હતું અને કોણું સાંભળ્યું હતું? ભાગ્યે જ અમુક લોકોને યાદ આવશે, અને જો યાદ આવે છે તો તમે બહુ જ લકી વ્યક્તિ છો. એકચ્યુઅલી જ્યારે તમે મૌન રહો છો ત્યારે તમારું હૃદય સાંભળે છે, અને જ્યારે હૃદય સાંભળે ત્યારે આત્મા તૃપ્ત થાય. હું તમને અમુક એક્ઝામ્પલ્સ આપું. તમે એવા કિસ્સાઓ સાંભળ્યા હશે, કાં તો પછી અનુભવ કર્યા હશે, કે જ્યારે તમે ગંગા નદીના કિનારા ઉપર જાઓ ત્યારે યાર કશું જ બોલવાની ઈચ્છા ના થાય, ચૂપ થઈને બેસવાની ઈચ્છા થાય. ઘણા લોકોને હરિદ્વારમાં એ પ્રકારના અનુભવ થયા હશે, ઘણા લોકોને ઋષિકેશમાં થયા હશે, ઘણા લોકોને ગીરના જંગલમાં થયા હશે, ઘણા લોકોને પ્રવાસમાં થયા હશે, અને ઘણા લોકોને ગાડી ચલાવતી વખતે થયા હશે કે જ્યારે તમને મૌન રહેવાની ઈચ્છા થાય. એ જે શાંતિ છે તમને એટલા માટે લાગે કારણ કે તમારું હૃદય એ વખતે સાંભળતું હોય છે. એ શું સાંભળતું હોય છે? તો કે કુદરતનો અવાજ. આજના દિવસે તમે કુદરતનો અવાજ સાંભળી શકો અને મૌન રહી શકો એવી શક્તિ તમને મળે એવી આશા. યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, ઇટ્સ હોટ. ગુડ મોર્નિંગ.
1: हेलो.
2: हेलो बेटा नवनीत.
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए.
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं. मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना. मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता. अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे. तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था.
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर. पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को.
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना. मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में.
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर.
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ.
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं. क्यों कर रहा था तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है. असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना.
1: लेकिन बुरी क्या लगी?
2: अंकल कल भी आखो एक मारूंगा.
1: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में.
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं.
1: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी.
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को. बेटे
1: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे.
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के. पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो मजा का.
10: टी सीरीज प्रेझेंट धमाल 4.
11: गुलाबी बिना चटणी कैसे बनी? गुलाबी बिना चटणी कैसे बनी?
10: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी. डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार. रिलीजिंग ऑन द 10th ऑफ जुलाई. अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर.
12: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
13: Oh no!
12: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: Listener MA, back to back gana sunega.
16: Back to back gana sunega.
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabala, uskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. Na virbala, burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: कौन?
2: हेलो।
1: हाँ बोलो कौन?
2: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ बोल, कौन रहा है?
2: बोल कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
1: बोल कौन रहे हो?
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ बोला था।
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
2: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
1: हाँ बोलो।
2: यार आपके टॉयलेट पे अभी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
1: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
2: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
2: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। ओए यार आपके टॉयलेट पे अभी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर।
1: तो कब आया था, कब घुसा अंदर?
2: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
1: तो कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
2: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
1: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और की सीवर में घुस गया?
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
1: सीवर में मरा रहा है तू?
2: गाली तो मत दो।
1: हेलो
2: हेलो,
1: फिर फोन कर दिया तूने?
2: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा। काम करो, एक चीज बोलो।
1: क्या बोलो?
2: कुकड़ू को
3: सर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया।
1: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: गुड मॉर्निंग, सांभळी रह्या छो मिर्ची, हूँ छो कृतार्थ। चलो हूँ तुमने एक सरस मजानी वार्ता कहूँ। एक शहर में पहली वक्त मॉल खुल्यो एटले दरेक ने एक्साइटमेंट हतुं। हवे शहर में जेने एक साधु महात्मा रहता हता, एमना चेलाओ एमनी पासे गया ने एमने कह्युं के अरे महाराज चालो अमारी साथे, शहर में एक नवो मॉल खुल्यो छे, મારે તમને બતાવવા માટે લઈ જવો છે કે જુઓ તો ખરા કે દુનિયામાં કેવું કેવું હોય, કેવી કેવી વસ્તુઓ મળે, અમે લોકો તો જોઈને આવ્યા ગઈકાલે, તમે ચાલો। એમને કહ્યું કે ઠીક છે, ચેલાઓ કહે છે તો જઈને જોઈએ, કઈક તો હશે। એ જયારે ગયા, આખો મોલ જોયો, ફર્યા, બધી જ દુકાનો એક્સપ્લોર કરી, એક એક સામાન ઉચકીને જોયો, એના પછી ચેલાઓએ પૂછ્યું કે મહારાજ કેવું લાગ્યું, મજા પડી ને, કઈક નવું જોવા માટે મળ્યું ને? તો કે હા યાર મજા તો પડી, બટ હું એ વાત જાણીને બહુ જ ખુશ છું કે દુનિયામાં એવી કેટલી બધી વસ્તુઓ છે કે જેના વગર હું ખુશ છું। આ વાત ધ્યાનથી સાંભળજો કે દુનિયામાં કેટલી બધી એવી વસ્તુઓ છે કે જેના વગર પણ મને ચાલી જાય છે। હમણાં સુધી આમાંની એક પણ આઈટમ મારા નાનકડા ઘરમાં મંદિરમાં છે જ નહીં, એના છતાંય મારું જીવન કેટલું સરસ ચાલે છે। યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, હું છું તમારો કૃતાર્થ। ગુડ મોર્નિંગ, હોપફુલી આ વાતથી તમને કંઈક સમજાય।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Esalen.
13: Gulabi saadi ani lali lal la, disate me bhari raja photo mazaka.
14: T series present The Mall 4.
15: Gulori bina chatni kaise bani?
14: starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
16: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव। कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है.
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: प्यार से है।
1: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
1: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
2: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
1: 7,500 रुपए का।
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
1: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
1: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने मेरे इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
1: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
1: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती हैं बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
1: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें रख लो, ये बीच में रख लो हमें यार।
1: अरे यार
2: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
1: तो यार ये आपको पहले सोचने थे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो।
3: संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
9: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
10: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
12: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स, गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़ेलिन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Listener MA, back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

वाह हाय शर्मीली वाह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा।

0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down. This is the Indian sound. Together so strong in God we trust. Yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na fiyat bala burka. Mirci burka.
1: हेलो हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
1: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
1: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
1: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
1: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
2: क्या हुआ अंकल?
1: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
1: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
1: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
1: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि मैं उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या लगी?
1: अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी थी?
1: ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
1: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
1: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
1: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: There's nothing like the magic of live theater.
11: Celebrate Prayog Theatre Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, The Laugh Out Loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar.
10: Join us on Thursday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheatre.com.
12: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
14: Gulabi saadi ani lali lalala. Disate me bhari raja photo mazaka.
15: T-Series present The Maal 4.
16: Ulaadi bina chatni kaise bani. Ulaadi bina chatni.
15: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
17: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
18: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
17: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
19: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణ జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
20: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణ జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
21: तेरा क्या होगा कालिया?
22: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
21: अब
22: मिर्ची का
23: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली goes down the ground. कोहली goes out of the ground.
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: There's nothing like the magic of live theater.
4: Celebrate Prayog Theater Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, the Laugh Out Loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar.
3: Join us on Thursday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheater.com.
5: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Celebrate brilliant this 4th of July. RK Jewels, aaye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TNC apply.
2: Indie Top 10
3: Kanika ke saath on Mirchi.
4: Mirchi sun rahe hain aap. Ab bari hai to set the pop clock of the week. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 hottest gaane hain. Usme ek nayi entry hai. Hamara 90s 2000s ka iconic indie pop gaana hone wala hai. A special spotlight, all this and more. To seedha shuruaat karti hu is hafte ki with Gaana number 10. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे उतरा है. शुरुआत ही इस हफ्ते के एक धमाकेदार गाने के साथ हो रही है. साडी सुन बाय हर्ष नुसी. हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव. गाना कास्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है. साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद गाना नंबर 9 पर इस अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, जो पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है. दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
2: Number 10.
5: Ho chup

0: समा ढक जाए।
1: This one is such a fun song. गाने का नाम है उड़ी उड़ी by अनीश सरकार। हृदय पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके this week on गाना नंबर 9। इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन है।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
1: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kaneka. Connect with me Instagram par jao. Mujhe follow kare. Mera handle is @RJKaneka. Follow karna bilkul free hai. @RJKaneka par koi gaane suggest karne hai, koi baatein batani hai. Bindas aake hit me up. Jo agle wala gaana hai, usse is countdown pe pure 23 hafte ho chuke hain. It's a Coke Studio Bharat song. Jitna khoobsurat ye gaana hai, उतनी ही खूबसूरत इस गाने तक पहुंचने की जर्नी है। आप सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपने बेडरूम में गिटार के साथ कुछ लोगों के लिए गाने लिखता है, बनाता है, वो अपनी जॉब करता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई रियलिटी शो स्टार नहीं, कोई बड़ा ग्रैंड लॉन्च नहीं, सिर्फ यूट्यूब के जरिए अपने खुद के लिखे गाने अपनी ऑडियंस को सुनाता है। उसकी ऑडियंस में 5 से 10 लोग जुड़े, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे करते करते वो एक दिन कोक स्टूडियो भारत का सबसे बड़ा गाना बनाता है। आई एम टॉकिंग अनूप जैन एंड उनकी जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस दैट वी हैव सीन इन इंडी पॉप म्यूजिक। बट व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग जो अनूप जैन का है, इसमें ना किसी ने भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है तो आप ऐसे बड़ा ड्रामेटिक गाना बनाओ। प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट को नहीं बदला बल्कि उनकी दुनिया में वो खुद ढल गए और इसीलिए शायद ये जो गाना आने वाला है वो इतना स्पेशल लगता है। कोक स्टूडियो को हम अक्सर फोक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के फ्यूजन से जानते हैं, लेकिन अनूप जैन का गाना जिसका नाम है अर्ज किया है, That's more than a fusion, it's a literary fusion. जहां उर्दू शायरी मिलती है contemporary pop song writing से, and Anoop Jain is the king of pop song writing. And I swear ये गाना इस बात का इतना बड़ा proof है that आज इंडिया का independent music अपने आप में इतना mature, इतना independent हो गया in real sense that बड़े-बड़े platforms like Coke Studio Bharat ना कि सिर्फ उसे पहचान रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं और उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से। That's why this song sounds so incredible because इस गाने के जरिए अनूप जैन हर उस आर्टिस्ट के दिल की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ये गाना 6 हफ्ते नंबर 1 पे भी रहा है। पिछले हफ्ते 10 पर आ गया था लेकिन फिर से 2 पोजीशंस ऊपर जंप करके अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनका। एंजॉय।
2: नंबर 8।

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti. अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Gulabi saadi ani lali lal lal.
9: T-Series present Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन.
12: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना.
13: Garrett Lane presents Everyday Real Diamonds. Now starting at just $49. Beautiful, versatile diamond designs crafted to shine with you every single day. Because diamonds aren't just for special occasions, they're for your everyday moments too. Celebrate this 4th of July with flat 20% off on diamond jewelry at the Garrett Lane store on Oak Tree Road. Hurry, offer valid only from July 3rd to July 5th.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार.
14: अब मिर्ची खा.
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: The one and only Diljit Dosanjh, resident dealer of super hit songs, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले एक नई नवेली एंट्री हुई जसलीन रॉयल का गाना इनाम, जिसने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello. Swagat hai aapka. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Connect with me. Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. This show is all about the hottest pop music of the week. And now it's time for us to shine spotlight on our indie pick of the week. And aaj ka gana spotlight is... गाने का नाम है रोज रोज बाय द येलो डायरी फीचरिंग शिल्पा राव, जो साल 2021 में रिलीज हुआ था. आज साल 2024 में हमें रोज रोज आदत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखने की, लेकिन 6 साल पहले 5 साल पहले इट वाजंट लाइक सच अ रेगुलर डील, एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टैंड्स आउट. एक वक्त था जब इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सपना था कि बस उनका गाना किसी फिल्म तक पहुंच जाए, लेकिन 2019-2020 के दौर से वो उल्टा होना शुरू हुआ था जब फिल्मों के बड़े प्लेबैक सिंगर्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक के मीटिंग पॉइंट पे आने लग गए. एंड देन दिस सॉन्ग वॉज अ एब्सोल्युटली जेनरेशनल रेवोल्यूशनरी song, cause एक तरफ है येलो डायरी, one of the best indie pop bands that we have seen. मुंबई से उन्होंने अपने बैंड की शुरुआत करी, कोई ओवरनाइट वायरल एक्ट नहीं है. सॉन्ग टू सॉन्ग, गिग्स टू गिग्स, कॉलेज फेस्टिवल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई. राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं. एंड देन दिस सॉन्ग है शिल्पा राव. शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहाँ एक अजीब सी खामोशी के बारे में बात हो रही है, जहाँ कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, बातें हो रही है पर असली बातें होनी बंद हो गई है. येलो डायरी का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दिस इज रोज रोज ऑन अ गाना स्पॉटलाइट दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: डूड दिस इज द सॉन्ग जिसकी वजह से राजन बत्रा मेरे एब्सोल्यूट टॉप फेवरेट वोकलिस्ट बन गए थे. व्हाट अ वॉइस, गूज़बम्स आ जाते हैं. उनकी गाने के थ्रू जो फीलिंग्स बयां करना जा रहे हैं ना, वो इनटू 10 टाइम्स फील होती है. राजन बत्रा की आवाज, येलो डायरीज का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दैट वॉज रोज रोज. अगर इस गाने को थोड़ा भी भूल गए थे तो वापस अपनी सारी प्लेलिस्ट में एड कर लीजिए. वन ऑफ दोज पॉप सॉन्ग्स जो उतने ही बड़े हुए जितने फिल्म के गाने होते हैं. ना काउंटडाउन पे आगे बढ़ने से पहले इट्स टाइम फॉर अ इंडी पॉप क्विज. एट आरजे कनिका पर आओ और मुझे बताओ दैट इंडिया का पहला रियलिटी स्टार कौन था जो एक म्यूजिशियन था. इंडियन आइडल जीते थे, फिर उनका एक गाना आया था जिसमें बारिश हो रही है. कौन थे वो आर्टिस्ट जो एक रियलिटी शो के जरिए मोहब्बतें लुटा रहे थे. एट आरजे कनिका पर जल्दी आके मुझे उनका नाम बताओ. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए वी माइट फीचर हिज सॉन्ग. अभी अप नेक्स्ट काउंटडाउन का अगले वाला गाना इज अ संजू राठौर सॉन्ग. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई भी गाना सजेस्ट करना हो, बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

The OG by Kumar Sanu called Tera Mera Pyar. इस गाने के बाद इतने सारे messages, कहानियाँ, किस्से सुनाए लोगों ने मुझे अपने college romance के. And Ashkai और मैं बहुत दिल से बहुत बड़ा thank you कहना चाहते हैं आपको इस segment के साथ classic को इतना प्यार देने के लिए. We really take your request very seriously. ना जो इस हफ्ते हम गाना feature करने वाले हैं वो भी आपकी request से ही बजा रहे हैं. The song we're gonna feature this week is...

The OG pop star song गाने का नाम है मोहब्बतें लुटाऊंगा by अभिजीत सावंत। मैं ये सबका गाना बन गया था, like एक pop anthem बन गया था पूरे देश का गाना। साल था 2005, हमारे घर में लैंडलाइन होता था। कॉल करके SMS करके वोट्स भेजे जा रहे थे। पहली बार लगा कि टीवी से हमने किसी को जिताया है और सब उस जीत का हिस्सा थे। हमें मिला हमारा पहला इंडियन आइडल अभिजीत सावंत एंड ये था उनका पहला गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा। एंड इवन द सॉन्ग नाउ जब मैं उस गाने की वीडियो को देखती हूँ विद मच मोर सेंस एंड पर्सपेक्टिव, इट ऑल मेक सेंस। उस गाने के थ्रू वो अपनी जर्नी ही तो बता रहे हैं दैट थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था बॉम्बे से जो एक स्टेज पर खड़ा हुआ और पूरे देश ने मुझे यहाँ जिता दिया, तो अब मैं सिर्फ मोहब्बतें लुटाऊंगा ब्रो। स्कूल में, ट्यूशन में, म्यूजिक चैनल्स पर, रेडियो पर, हर जगह अभिजीत सावंत ही थे। इट वॉज वन ऑफ दोज रियल रेयर मोमेंट्स। पर एकदम सच बताना, दिल के कोने में झांक कर बताना, झूठ मत बोलना मुझे, कहीं ना कहीं हम इस गाने को भूल चुके थे। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गाना चलते ही यू विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट सिंपलर टाइम्स। अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के लिरिक्स, प्रेम एंड हरदीप का म्यूजिक, 2005 का ये आइकॉनिक इंडी पॉप गाना, दिस इज मोहब्बतें लुटाऊंगा ऑन आ कसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

अभिजीत सावंत की आवाज में दैट वॉज मोहब्बत लुटाऊंगा, बट एक्चुअली यू नो आदर लिरिक्स, समीर ने क्या लाइंस लिखी हैं, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, लाइक एग्जैक्टली टेलिंग अभिजीत सावंत की जर्नी थ्रू दिस सॉन्ग. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो जो भी इंडी पॉप क्लासिक गाना है जो यू स्टिल लव हमारे साथ शेयर करो. अशकाय और मैं आपकी रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, वी माइट फीचर योर फेवरेट नेक्स्ट वीक. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. दिलजीत दोसांझ एंड सिया का आइकॉनिक कोलैबोरेशन, गाने का नाम है रांझा, फीचरिंग प्रोडक्शन बाय डेविड गेटा. नेवर थॉट आई विल से ऑल दीज नेम्स टुगेदर. 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath. On Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Instagram par jao, connect karo. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna ho, koi gaana share karna ho, bindaas aake hit me up. Aksar log gaane sun ke gaano ka naam bhul jaate hain aur mujhe itne sare messages aate hain. Kanika, wo gaana number 5 kaun sa tha? Jo gaana number 9 par bajaya, wo kaun sa gaana tha? So before we move on to the top 2 songs of the week, a quick recap karte hain right from the top. Gaana number 10 par tha Harsh Nussi ka Saadi Sun.
4: Akhiyan ne akhiyan mila te sahi, saadi sun apni sana te sahi.
3: Uske baad Anish Sarkar Hruday ka Udi Udi was on gaana number 9. गाना नंबर 8 पर दिस वीक अनूप जैन का अर्ज किया है
5: कायर जो थे वो शायर बने.
3: जसलीन रॉयल का इनाम ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7. फिर दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6.
6: जिधर तू पीछे यातन गीना चौपर जोगी डब दबीना.
3: संजू राठौर विद बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5. स्टूडियो भारत का आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 4. दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 3. एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन द हरियाणवी सेंसेशन. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग यानी गाना नंबर 1 पर है एक बार फिर से शीशा बाय मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा. मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, ये गाना भी 14 हफ्तों से बरकरार है. सो दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन गाना नंबर 2, फिर मिट्टा रॉर का शीशा ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 2.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना.
4: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज़ डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: Brought to you by Deep Foods. Deep Foods khao, to jano. Brought to you by Deep Foods. Deep Foods khao, to jano.
0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
8: Tera kya hoga, Kalya?
9: Sardar. मैंने आपका नमक खाया सरदार.
8: अब मिर्ची का
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Celebrate brilliant this 4th of July. RK Jewels, aaye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TMC apply.
2: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
4: हर फ्राइडे बॉलीवुड हमें बताता है कि उसने इस हफ्ते क्या बनाया, लेकिन हर मंडे ऑडियंस बॉलीवुड को बता देती है कि उसने क्या रिजेक्ट किया। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। आज सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं है, सिर्फ बड़े बजट्स काफी नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया भी काफी नहीं है। अच्छी फिल्म हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, लाइक मैं वापस आऊंगा। बुरा रीमेक हो तो लोग उसे छोड़ भी देते हैं। और जो चीज कभी सिर्फ पोस्टर्स और प्रमोशंस डिसाइड करते थे, आज वो प्लेलिस्ट, रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ डिसाइड करते हैं। यानी बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन उसे बदल कोई और नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ड्रॉप ऑफ द मिर्ची टॉप 20। मैं हूं आपका ट्रैवल बडी ऑन दिस राइड, सुरेन सुंदरम। एंड वो मंजर आ गया है जहां एक गाने को 13 महीनों बाद शायद हम अलविदा कहने जा रहे हैं। हर जेनरेशन अपनी मोहब्बत को एक गाने में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। शायद इस जेनरेशन के लिए वो है सैयारा। नॉट जस्ट अनदर हिट सॉन्ग, ये वो गाना था जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार, अपना इंतजार और अपना टूटना छुपा दिया। वक्त बदलेगा, महीने बदलेंगे, पर सालों बाद कहीं दिल के किसी कोने में एक सैयारा छुपा होगा।
5: नंबर 20।

कभी कभी बॉक्स ऑफिस एक बहुत खूबसूरत बात सिखा देता है। मैं वापस आऊंगा उसका जीता जागता सबूत है। फिल्म ने शोर मचाकर नहीं, लोगों का दिल जीत कर अपनी जगह बनाई। और शायद हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है। बहुत सालों तक बॉलीवुड ने हमें एक ही तरह की हीरोइन दिखाई, एक तरह का चेहरा, एक तरह की बॉडी, जिसे प्यार सिर्फ कुछ लोगों को ही सूट करता हो ऑन द स्क्रीन। फिर आई अंजलि आनंद, टीवी की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स में से एक, और फिर उन्हें मिली एक फिल्म।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर हिमसेल्फ। अब उसमें अंजलि का रोल छोटा था, लेकिन वो रोल बन गया बेहद यादगार। एंड अब धमाल 4 में वो सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो लव स्टोरी का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि हीरोइन होने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं, परफेक्ट ऑनेस्टी चाहिए होती है। और अंजलि में वो ऑनेस्टी साफ नजर आती है। सच कहूं, अगर हिंदी सिनेमा वाकई बदल रहा है तो उसकी पहचान उन चेहरों से होगी जिन्हें देखकर ज्यादा लोग कहेंगे ये तो हम जैसे लगते हैं, ये तो हम ही हैं। नंबर 18 पर इस हफ्ते एक नई एंट्री हो रही है मराठी सेंसेशन संजू राठौड़ की आवाज में रितेश देशमुख और अंजलि आनंद पर पिक्चराइज। दिस वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इस गाने का नाम है साड़ी, फ्रॉम धमाल 4। नंबर 18।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La
1: vieja la burga. Mirchi, burga. Hello.
2: Hello.
1: हेलो
2: हाँ
1: बोलो कौन
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोल कौन रहा है
2: बोल कौन रहे हो कंप्लेन करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
1: बोल कौन रहे हो
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: पूछ के घुसे थे क्या अंदर
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
1: हाँ बोलो
2: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
1: कब आया था कब घुसा अंदर
2: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
1: तू कहाँ से आया तो नहीं हो गया है
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
2: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
1: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
1: सीवर में मरा रहा है तू
2: गाली तो मत दो
1: हेलो
2: हेलो
1: फिर फोन कर दिया तूने
2: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
1: क्या बोलो
2: कुकड़ुकू
3: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका बन गया
1: कुकड़ुकू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज जूल्स किंगडम ऑफ जूल्स वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, khushiyon ke swaad chakhti. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी दीप खाओ तो जानो
8: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना
9: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49 ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस देयरफॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू सेलिब्रेट दिस 4th of July विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th
10: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति 732-357-8200 जय गुरुदेव
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: Gulabi sari ani lali lal lal.
12: T-Series present Dhamaal 4 Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey Directed by Indra Kumar Releasing on the 10th of July A complete family entertainer
13: There's nothing like the magic of live theater.
14: Celebrate Prayog Theater Group's 50th anniversary kickoff with two memorable stage productions, the laugh out loud comedy Last Over and the timeless classic Ala Afsar.
13: Join us on Thursday, July 10th at 7 p.m. at Brook Arts Center, Bound Brook, New Jersey. Book your tickets now at prayogtheater.com.
15: Oak Tree Road లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
16: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
17: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें. मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
17: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
17: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
18: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
19: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
20: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
19: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
21: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
19: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
22: एक ही होता है.
19: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
23: Only on Mirchi. It's hot. Number 17.

व्याह करवा दो जी, इस हफ्ते नंबर 17 पर है, लेकिन मेरी नजर गाने पर नहीं, हमेशा उसके टाइटल पर ही जाती है। है जवानी तो इश्क होना है, और मुझे सच में लगता है कि बॉलीवुड को फिर से लंबे टाइटल्स याद आने लगे हैं। देखो, हम 90s वाले लोग एक अजीब सी लग्जरी के साथ बड़े हुए थे। उस जमाने में फिल्म के टाइटल सिर्फ नाम नहीं होते थे, पूरे के पूरे इमोशंस होते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा दिल आपके पास है, कभी खुशी कभी गम, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट टू ऑफ माय फेवरेट्स, बोथ ऑफ देम वर सलमान खान फिल्म्स। नंबर 1 पर

0: और ऐसा लगता था जैसे पोस्टर देखने से पहले ही फिल्म आपसे बात कर रही हो। फिर सिंप्लिसिटी ट्रेंड बन गई। अल्फा, एनिमल, सिकंदर, धुरंधर, एक शब्द, एक पंच। सर्च करने में वैसे आसान भी होता है, लेकिन याद रहने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं होता। शायद इसलिए 25-30 साल बाद भी हम उन पुराने टाइटल्स को आज भी पूरा बोलते हैं। एक भी लफ्ज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं थे, वो बॉलीवुड की वो कैबुलरी बन गए थे। नंबर 16 पर इस हफ्ते वी हैव गॉट द टू वर्ड्स कॉल्ड भूत बंगला, जिसका गाना तू ही दिसदा इज ट्रैकिंग वेल विद द ऑडियंस। लेकिन लंबी टाइटल वाली फिल्मों को याद करते हुए, हियर इज अ मॉडर्न डे फिल्म विद अ लॉन्गेस्ट टाइटल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका शायद सबसे पॉपुलर एंड येट सबसे खूबसूरत गाना मोहित चौहान इन सुपर फॉर्म, ये है पीलू। प्रीतम दा का म्यूजिक, इरशाद भाई का लिखा, बनाते इसको इस हफ्ते का रिवाइंड।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना.
5: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज़ डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेशंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th of July विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
9: Number 50.
10: Oh, look at that!

फॉर मी ये कॉकटेल का सबसे हल्का गाना है एंड मे बी दैट्स व्हाई वल्ला इस हफ्ते भी नंबर 15 पर है। और कॉकटेल 2 को देखकर एक बात काफी अच्छे से समझ आ जाती है, हिट गाना बनाना मुश्किल है लेकिन उससे भी मुश्किल है एक्साइटमेंट को जिंदा रखना। आजकल बॉलीवुड में फिल्म अनाउंस करना बहुत आसान हो गया है, मोशन पोस्टर, टाइटल रिवील, टीजर, सोशल मीडिया ट्रेंड, और फिर होता है इंतजार, अ लॉन्ग वेट। नाउ यश की टॉक्सिक को ही देख लो, पहले एक रिलीज डेट आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अब फाइनली 26 अगस्त 2026 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। एंड देन यू गॉट सलमान खान की मातृभूमि, दो गाने आ गए थे वैसे मिर्ची टॉप 20 पर, फिल्म की बातें भी शुरू हो गई थी, लेकिन आज अगर आप सलमान खान को गूगल करोगे तो ज्यादा डिस्कशन उनकी अगली फिल्म का हो रहा होता है, वेयर ही इज वर्किंग विद अ साउथ इंडियन डायरेक्टर कॉल्ड वामशी पेडपल्ली। अजीब है ना, कभी कभी लगता है बॉलीवुड फिल्म बनाना नहीं एक्सपेक्टेशन मैनेज करना हार गया है, क्योंकि हाइप की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, अगर आप वक्त पर रिलीज नहीं कर पाए ऑडियंस रुकती नहीं, वो अगला ट्रेलर देख लेती है, अगला गाना सुन लेती है, अगली फिल्म का इंतजार करने लगती है। लेकिन नंबर 14 पर एक टिपिकल समर कॉमेडी बॉलीवुड फिल्म धमाल 4 का ये भोजपुरी फ्लेवर वाला पुल ऑन देसी गाना चटनी। नंबर

0: नंबर 12।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़े मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

ये जो सुना ना अभी, ये इस हफ्ते की नई एंट्री है, नंबर 12 पर, इस कमीना 2.0। अबे क्या है ये? देखो जो मैं कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि जब म्यूजिक अच्छा लगता है ना, मैं दिल से उसकी तारीफ करता हूँ, और जब म्यूजिक बकवास होता है तो उसे भी उतनी ही ऑनेस्टी से कॉल आउट करता हूँ। यार एक क्लासिक गाने को रीमेक करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसे बिना फील के, वाइब के, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिना सब्सटेंस के रीमेक करना जरूर गुनाह है। ओरिजिनल इश्क अमीना सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, उसमें शरारत थी, आइटम सॉन्ग होने के बावजूद एक अदा थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो बात ही नहीं है। देखो धुरंधर ने हमें सिखा दिया है कि अगर रीमेक्स बनानी ही है तो वो कैसे बनानी है।

धुरंधर ने सिर्फ गाने उठाए नहीं, उसकी स्पिरिट को समझा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज जो है वो सही की इन लोगों ने, सोनू निगम और अलका याग्निक की असली आवाज को बरकरार रखा, बाकी सब इतना ऑर्डिनरी है भाई। और अफसोस इसलिए भी है क्योंकि बेबी डो डाई डो का ट्रेलर जेन्युइनली मुझे एक्साइटिंग लगा था। एक डेफ और म्यूट असैसिन, क्या कमाल का प्रमाइस है। लेकिन कभी कभी एक गाना फिल्म की एक्साइटमेंट को बना भी देता है और उसे बिगाड़ भी देता है। कॉकटेल 2 ने पहला वाला काम किया था, एक के बाद एक चार्ट बस्टर्स, और उन्हीं में से एक इस सीजन का सबसे खूबसूरत लव सॉन्ग है। नंबर 11 पर दिस इज द किंग अरिजीत सिंह विद द सॉन्ग तुझको। नंबर 11।

0: चैन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: This hour is brought to you by Raj Jewels.

0: कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 10.

0: गुरु रंधावा के हिट फैक्ट्री से एक और चार्ट बस्टर केयर सिर्फ दो हफ्तों में टॉप 10 में आ गया है। और ऑनेस्टली अगर परफॉर्मर्स की बात चली है तो सनी देओल का नाम उस लिस्ट में हम कैसे ना लें। हाल ही में उनकी एक फिल्म इक्का का टीजर मैंने बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा और उसमें सनी देओल को फिर से लॉयर के रूप में देखते ही मुझे एक बात समझ आ गई। अगर आप 2005 के बाद पैदा हुए हैं ना तो शायद तारीख पे तारीख आपके लिए सिर्फ एक मीम होगा, लेकिन मीम तो वो बाद में बना, पहले वो सिनेमा था। 34 साल पहले दामिनी नाम की एक फिल्म में सनी देओल ने एक अदालत के सीन को इतना आइकॉनिक बना दिया कि उसके डायलॉग्स आज भी लोग कोट करते हुए नहीं थकते।
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलोर्ड। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा।
0: आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सिर्फ तारीख पे तारीख ही नहीं, 2.5 किलो का हाथ भी इसी फिल्म की देन है ना। इक्का का टीजर उस याद को भी सल्यूट कर रहा है और तब समझ आता है कि कुछ परफॉर्मेंसेस फ्राइडे से संडे तक नहीं जीती, 3 दशक तक जिंदा रहती हैं और उनके डायलॉग्स 30 साल बाद भी हमारे दिल में जिंदा रहते हैं। और कुछ फिल्मों का सफर थिएटर्स में 30 दिन भी मुश्किल से कटता है। है जवानी तो इश्क होना है इज डाउन टू मे बी 1 or 2 शोज एट द सिनेमा हॉल्स, लेकिन उसका साउंड ट्रैक अभी भी लड़ रहा है, ये जंग लड़ रहा है। इस हफ्ते नंबर 9 पर ये है वाओ।
2: नंबर 9 वाओ।

आई हैव नेवर केयर्ड अबाउट बॉक्स ऑफिस नंबर्स. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेज मनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में नंबर्स हैव स्टार्टेड मीनिंग समथिंग, राइट? कॉकटेल 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. और एक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है. एक तरफ धुरंधर जैसी इवेंट फिल्म्स हैं, जिन्हें देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं, एक कल्चरल मोमेंट बन जाता है. नंबर

गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर इज अ नंबर 6, एक ऐसी फिल्म जो 3,000 करोड़ के फिगर्स टच कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीतें, लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ। वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी ना सिनेमैटिक

मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा अपॉन की आवाज में, दिस इज मोमो के धागे। स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi.
1: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा Mirchi मुर्गा.
2: Hello.
3: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ. आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस. आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा.
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना. अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर. मैं तो बस आपसे ये कह रहा था ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है. कहाँ कुरियर कर दूँ? आप आगे ले लेंगे इसको.
2: कितने का है मेरा?
3: 7,500 रुपए का.
2: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख जमा किया था. मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे.
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए.
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए.
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना. मैं आपको आगे बता रहा हूँ. 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके. सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है. आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने. उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से. वो मशीन महंगी आती है. 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं. 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है. आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है. और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है. कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना. 7,500 रुपए आपके बचते हैं.
2: ये भी तुम्हें देख लो. ये तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम.
2: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो. ये बीक में रख लो हमें ज्यादा.
3: अरे यार
2: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार.
3: तो यार ये आपको पहले सोने चाहिए ना संदीप जी. मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना. ये तो कम डीडीए की तरफ से. आप एक तो गुस्सा ना करें. एक सेकंड फोन आ रहा है. रुकिए रुकिए. हेलो. हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से. सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है. हाँ संदीप जी.
2: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए करने के नाम है जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने.
3: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए.
2: तुमने आम इंसान तुमने
3: आप मेरी बात सुनिए. आप वैसी टेंशन लग रहे हैं. मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप.
2: हाँ बोलो बोलो
3: संदीप.

0: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
1: भाई एक तो बजे की मार्केट पड़ रही है यार। आप भी ले लो हमारी कुकड़ू को।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
9: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
10: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
7: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: Tera kya hoga, Kalya?
13: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
12: Ab mirchi kha.
14: Radio Mirchi. It's hot.
15: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

धुरंधर टू का आरी आरी जब जब सुनाई देता है कहीं भी, उसके साथ धूल मिट्टी और देसी स्वैगर की वो खुशबू भी साथ आती है। लेकिन बॉलीवुड की एक और पुरानी आदत है और उसे बॉलीवुड ने कभी छोड़ा ही नहीं, दुनिया भर की जुबानों से जो बे इंतहा इश्क है। कभी हम स्पेन चले जाते हैं,

कभी श्रीलंका की भाषा सिनेला में हम मन के सुन लेते हैं। और प्रीतम दा तो शायद इस गेम के सबसे बड़े प्लेयर हैं। रिमेम्बर तेरा होने लगाऊं?

अंग्रेजी लव्स इंडियन मेलोडी. फाइनली इनफ, बॉलीवुड कभी फॉरेन लैंग्वेज में गाने नहीं बनाता, वो सिर्फ हिंदी गानों को एक पासपोर्ट दे देता है. गाना चाहे स्पेन चले जाए, इटली घुमाए या फिर श्रीलंका से होकर निकले, दिल उसका हमेशा हिंदी में ही धड़कता है. और शायद इसलिए ये गाने फैशनेबल लगते हैं, ग्लोबल लगते हैं, लेकिन टोटली अपने लगते हैं. इस हफ्ते नंबर 3 पर कॉकटेल 2 का वो समर एंथम जिसमें इटली का रंग है और बॉलीवुड का दिल है. दिस इज राघव चैतन्य विद माशुका. नंबर

0: Train ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: Listener mein back to back gana sunega.
10: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
12: Number 2.

0: सिर्फ चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ड टू नंबर टू। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है, उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर बॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर मुझको सताओ,
0: एंड देन द वन दैट बिकेम अ टाइमलेस हार्टब्रेक क्लासिक।

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंडट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंडट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर वन, रील से लेकर शादियों तक इंडिया का नंबर वन गाना। जैस्मिन सैंडलर्स, मधुबंती बागची शरारत करने वाले हैं फिर से नंबर वन।

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे। इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं, लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरे ओवर एंड आउट।
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Celebrate brilliance this 4th of July. RK Jewels, aaye, scratch the card and unlock dazzling surprises. Koi purchase zaruri nahi. TNC apply.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: This hour is brought to you by Raj Jewels.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। वेलकम टू द शो जी। और हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते थे जब वो ये कहते थे कि यार इवन इफ यू आर हेटिंग समवन ना, अगर आप किसी से नफरत भी कर रहे हैं तो आप उनको अपने दिमाग में, आप उनको अपने जहन में जगह दे रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एक बड़ा बेहतरीन शेर मिला मुझे शाहिद इश्की साहब का। लिखते हैं कि हमसे नफरत करो कि प्यार करो, हमसे नफरत करो कि प्यार करो, कोई रिश्ता तो उस्तवार करो। और कितना सटीक है भाई साहब, कुछ तो हो हमारे बीच। उस्तवार का मतलब पक्का करो, मजबूत करो। हमसे नफरत करो कि प्यार करो, कोई रिश्ता तो उस्तवार करो। और बिल्कुल जायज बात है यार, जब तक आप हेट भी अगर फील कर रहे हैं ना किसी की तरफ, तो कुछ तो है आपके अंदर जो अभी भी उस शख्स से जुड़ा हुआ है कि नहीं। Stay tuned to मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ। मुझसे बात करना चाहें तो आ सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।